103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रिभोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री

0: मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य

0: गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

इंसान की असली पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके बोले गए शब्दों और व्यवहार से होती है। चेहरा उम्र के साथ बदल जाता है लेकिन संस्कार और स्वभाव हमेशा याद रह जाते हैं। आपका अच्छा स्वभाव आपके व्यक्तित्व को लगातार निखारता रहता है और अपने इसी व्यवहार से आप लाखों दिलों को जीतने की ताकत रखते हैं। इसलिए अपना आचरण सदा उत्तम रखिए और अपने शब्दों व वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी आपका जीवन सुखमय बना रहेगा।

चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी की इस वंदना के साथ।

जगत जननी माँ जगदम्बा की शक्ति अपरंपार है। जिस किसी ने भी सच्चे मन से उन्हें याद किया, माँ ने उन्हें अपनी कृपा से नौनिहाल किया। तो आइए हम सब भी आराधना करें उस जगत जननी माँ जगदम्बा की।

सभी संकटों को हरने वाले श्री बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में हमारा सादर प्रणाम। सभी भयों कष्टों को मिटाने वाले श्री हनुमान जी सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विधि राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतन जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों पूरे 25,000 सजे सजाए रथ 10,000 हाथी

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। सात 7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम। हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग हम आपको सुनवाएंगे 7:40 पर। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं सुबह समाचार प्रभात में 8:15 पर। आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज दिन में 1:00, शाम 5:00, शाम 7:00, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ी नाटक नौखे लोग नौखियां गल्ला। सुबह 9:00 हम आपको सुनवाएंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो धर्मशाला। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसके अलावा सुबह 11:00 दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां और 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे पहाड़ों के सुर कार्यक्रम। 11:05 पर सुनिएगा लोक गीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। 11:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 सुनिएगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम और सुनो सखी। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 12:30 पर। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का। शाम 5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे भजन और 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच।

6:05 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम और 6:35 पर आपको सुनवाया जाएगा मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। 7:10 पर हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे, और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम, और 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम धाम गीतांदी। रात्रि 10:30 पर सुनना ना भूलिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में, और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बोकाडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। ट्यून इन है आप इस वक्त 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, जहां रोजाना की तरह आज भी लेकर आ गए हैं हम आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुबह सुहानी। जी हाँ, चढ़ती सूरज की पहली किरण, चिड़ियों की चूचू, कोयल की कुकू और कुछ ठंडी हवा के झोंके जब आपको छू जाए तो आपकी सुबह सुहानी हो जाती है और शुरुआत हो जाती है एक ऐसे दिन की जहाँ ढेरों खुशियाँ बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही होती है। श्रोताओ, ये जीवन अनमोल है, इसका हर एक पल कीमती है, इसलिए इस जीवन के मूल्य को समझे, क्योंकि आपकी एक मुस्कान आपके अपनों का जीवन महका देती है। तो चलिए भाई, आपकी सुबह को और भी सुहानी सी बनाने के लिए छेड़ते हैं सुरीली तान गीत संगीत की। आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ।

जी हाँ, आज की ताजगी से भरी हुई सुबह की शुरुआत हो चुकी है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और अब कार्यक्रम में बात करेंगे आज के इतिहास की। जी हाँ श्रोताओ, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है हर दिन की कुछ ऐसी घटनाएं जो उस दिन को और भी अधिक विशेष बना देती है। तो चलिए डालते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं पर नजर। 16 जून 1606 में आज के दिन जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को लाहौर में मार दिया गया। वहीं 16 जून 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर के मोराड की लड़ाई आरंभ हुई थी। वर्ष 1903 में हेनरी फोर्ड और 11 निवेशकों ने मिलकर फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। वहीं 1911 में न्यूयॉर्क में आईबीएम की स्थापना कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में हुई। 16 जून 1925 में महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का निधन आज ही के दिन हुआ। 16 जून 1963 में सोवियत संघ की वेलेंटिना टेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। वहीं 16 जून 1983 में छत्तीसगढ़ के गुरु घसीटा दास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। वहीं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की अगर बात करें तो आपको बता दें 16 जून 1920 में हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ। 16 जून 1976 में भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी

रोहित श्रीवास्तव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। श्रोताओ, कार्यक्रम में जानकारियां तो आपके साथ ही ही साझा होती रहेगी, फिलहाल आपका मनोरंजन करेंगे इस प्यारे से गीत के साथ। आकाशवाणी धर्मशाला के साथ सुनते रहिए प्रोग्राम सुबह सुहानी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारा साथ निभाते रहिए।

बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम। चलिए श्रोताओं, बात करते हैं कि आज कौन सा खास दिन कौन कौन से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 जून का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसी यानी कि परिवार प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य प्रवासी कामगारों द्वारा अपने परिवार और अपने देश के विकास के लिए भेजे जाने वाले पैसों के योगदान के लिए मान्यता देता है। उनके द्वारा भेजा जाने वाला ये धन देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। वहीं आपको बता दें कि 16 जून का दिन एक और खास दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आज है वर्ल्ड सी टर्टल डे यानी कि विश्व समुद्री कछुआ दिवस। ये दिन समुद्री कछुओं के संरक्षण और उनकी घटती हुई संख्या के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, जलीय जीव जंतु भी हमारी प्रकृति हमारे एनवायरनमेंट का एक अहम हिस्सा है और उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी धरती, अपनी नदियों, अपने समुद्रों को साफ सुथरा बनाए रखेंगे। तो इस सभी के लिए हम सभी को एकजुट होकर अपने वातावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी जो है वो टाइम हमें दिखा रही है 7:30:35 और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट। जी हाँ, ताज़ा तरीन जानकारियों में आपसे साझा करते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व के तनाव को ख़त्म करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। वहीं फ्रांस के में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन 7 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। सुबह सुहानी कार्यक्रम में और भी जानकारियां आपसे साझा होगी, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और चलते चलते आपको मौसम का हाल भी बताते चलें। जी हाँ, आप हिमाचल जैसे खूबसूरत जगह में रह रहे हो तो भाई पहाड़ों में तो हर वक्त मौसम सुहावना ही बना रहता है, और ख़ासकर बात हो धौलाधार के आंचल में बसे धर्मशाला शहर की तो ये नाम सुनकर ही ना हर किसी का दिन बन जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम है ही इतना बेहतरीन। सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ, दिन ढलते ढलते कभी बारिश की हल्की फुहारे दिन भर की थकान को मिटाकर चली जाती है। कुल मिलाकर कहे तो मौसम तो भाई एकदम खुशनुमा सा रहने वाला है। वहीं आसपास के प्रमुख शहरों के तापमान में आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने वाली है, लेकिन आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हिमाचल में प्री मानसून की बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। श्रोताओं, मौसम तो समय के हिसाब से आते जाते रहेंगे, पर हमारे रेडियो स्टेशन से संगीत का माहौल बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, और इसीलिए आपको प्ले कर रहे हैं हम ये बेहद ही प्यारा संगीत। आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, सुनते रहिए सुबह सुहानी कार्यक्रम।

0: श्रोता, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल इस कार्यक्रम को इसी वक्त फिर से लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हो चुके हैं और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हम हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। हिमाचली संस्कृति से सराबोर कार्यक्रम शुभ भ्याग की शुरुआत हम कर रहे हैं शेर सिंह की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ।

1.71 लाख, साथ ही पाइए रुपीज 55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa. श्रोता, हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भाग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, हिमाचली लोकगीतों में वो सरलता, वो सहजता है जहाँ हम अपने हर भाव को गीतों में ढालकर उसे खूबसूरत रूप दे पाते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक बेहद प्यारा सा लोकगीत लक्ष्मी और राजेश कुमार की आवाज़ों में।

श्रोता, इसी के साथ हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
5: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
4: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
6: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
7: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
8: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
7: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
6: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनुप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
9: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
6: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
11: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
4: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: झांकियां ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस: स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
2: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
1: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future."
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच

0: हाय वो मेरी ये जानी घड़ी टाइम तो बड़ा हुई आ 9 बजे के बाद अज छुट्टी आनी है जड़ी ये घरे का काम कमोड़ा ही नहीं मुकदा कितनी भी तौल करा मैं कदी भी टाइमे दी नहीं पुजदी है केसरो आए रहना ना तिना भी ताने देने मंजो मूंगा कुथू मेरा समान फटाफट कपड़े लांदी है ये भी प्रेस करने हो वो भी प्रेस करने हो ये जड़ा टंगोया इसी लगा दी झटपट जी मैं तैयार लेट हो जाना नहीं तो सिरे पार दी है ना आई रहना तिना भी फिर लेट हो जाना मैं पिछे अटड़े फिंडुआ तैयार होना दे मिंजो बड़ी बड़ी खरीद करना पौली कने पतनी कितना टाइम लगना है अज बाजार छड मेरे चादर वे खिंजी खिंजी ते फाड़ी हड़ना है अज छुट्टी करी बैठे स्कूले भी नहीं गया ना स्कूले भेजना चल तुझे पेटे पीड़े का बहाना होंदा पिछे ते तू खरा हो जाता क्या होया तुझो क्या हो दौन फिंडू ऐ कहे ते अल्ला पाया मंदा नहीं है तू ना मत दिन दिन तो हम जो बाप पुत्र जीना कुथी मैं चली पौंदी ते इसी ते इसते बब्बे ते भी ज्यादा काली पौंदी मैं नवा सूट ला नहीं की इना यो लगी पौंदी पेटे पीड़ा दिखने कुत की करे ते बाहर निकलना दिन दे मिंजो जीना दिन दे मिंजो मेरी जिंदगी पिछाट चुप रह कने लाइयो नक्की पूंजी क्या आई सीओ सारा थोबड़ गंदा करी लिया इन्नी
1: सांतिये ओ सांतिये
0: इल्ला केसरो भी आई रही इन्ना पक्का ताने मारने उन मिंजो
1: ओ सांति ओ इत्यार मुश्किल ये वो मुश्किल ही है बस निकल यानी 9 बजे दी ओ फिंडू भेजबो अपनी मम्मी हो
0: आई अंदर आई अड़ी जरा के
1: ए बो नखरी गान पानी है अंदर आई है इन्ना लिए बड़ा भारी टाइम लाना चलनी पौंदी अंदर ही हाओ शांति ए कहे इन्नी रोला पाए इतना भारी
0: मी दिख लग दे रींड पाई हो इन्नी कुथी जाना क्या एक कोप तो मेरे सिरे पहले ही है ना
1: ओ मनुमा तू कहे और रोंदा रहंदा मऊ दी जानी खांदा म्या ऐ कहे कर रह रखे शांति ये स्कूल ये कह नहीं भेजे
0: ओ आज इस दे पेटे पीड़ है मिए क्या दसा तुझो है नहीं गया स्कूल ये अट पचा अटड़े फिंडुआ
1: उल्ट फुल्ट खाना मिए आजकल दे बच्चे आ तब पेटा पीड़ा ही कराना हाँ बड़ी भारी जैम तो निकी आने ने भी रोटियां काट खांदे कने बस उल्ट फुल्ट लगियो लगियो लगियो
0: इन्नी नी मानना ओ दिख मी केसर इन्नी नी मानना
2: मम्मी मम्मी जाना मिंजो नी लेके जांदे मम्मी जी बाजी कहानी है
0: एले पकड़ एले 20 रुपये ए मकोड़ुए दुकाना जाया ना कदे खाए होया बाजी छड़ मेरे पीछा
2: मम्मी मम्मी जाना शोगी मम्मी जाना
0: और भी लेऊंगी तुझे मैं बाजी चल चल केसरो ओया चुप जराए नसी चल दिया ना
1: हाँ बो शांतिये तेरी लाद बड़ी खराब मेरिया कुड़िया बड़िया भारी सोबरिया जरा नहीं रोंदिया मैं तैयार हो वैता हाँ इन्नी कल उदा टींगा वै कैचू लाइयो मारी सीओ दो कने ठोक अंदर कमरे च
0: ये मत बोल अड़िए कितने भागा दा मेरा फेंडू इं लगी तू गलाना ए जरा बाहर दे लोग आंदे ना तेरा दिखी करदा है ड्रामा उए मेरे फेंडू बड़े शरीफ है ये मत बोल मेरे मुनुए चल तू चल
1: ता कहे भाई ऐ ते एड़ा ला शांति ए मेरा क्या जानदा बठैल मेरा जाना इसी अपने सारे पर चल चल तू बस छुट्टी आनी 9 बजे दी चल जेड़े लायो ना चल तू ही नहीं
0: चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल

0: इसरो इस झोले पकड़े बड़ा भरी भारी है पकड़ता नहीं टूटी आनी इसकी समान बड़ा भरी भारी हो गया ले लियाऊंगा हूं सब कुछ तू लिया ना सब कुछ खरीदी लिया ना बाद च करे जाए मत बोलती है तेरे ते लोग का झोलू है मेरा जड़ी ये तनी टूटी आनी खंडाला बोरू ले आना था इधर के झोले कहीं ले चलियो हाय थकाई थी हो इन्ना हाँ हाँ हाँ बड़ी भीड़ कने बाजारे च अजकल बाजारे होने तो बड़ा भरी औखा चूहे ले पे पेटे च दुड़कना खाई लैंदियां मी कुछ
1: मैं तो तुझे बड़े टैमे दी ही बोलने आली बड़ा भारी डो पे अडीक बजी आ दी पेटे मेरे मी खाली होई आ चल चल लंघ पा रहे उत्थू खांदे लेन दे चली अपना डब्बू लोका दिया पाए में तीस चौथू बहनी है चल खानी है
0: उन्ना आना मिये रोटी नहीं खानी रोज ही तो खांदे करे चले मिये पहले तो ठंडी ठंडी कुल्फी खाई लेंदी है न चल चल सड़क लंघ
1: हाँ मैं तो नहीं खांदी बाहर आई करिए कुछ भी मैं नहीं खांदी ना कुल्फियां कल्फियां जाना है बड़ा है ना कियां बनाई होनी हाँ इन्हों के हथा दे पास नहीं दिखे होंगे मिंजो ते ना बो ना
0: हा अड़िए केसरो ओना भी क्या तीजो ने बो जीए तू मी हा छड़ नहीं खानी आइसक्रीम ता ओ चल दुकाना पार मिये अतरो चतरो दुकाना चल दिया इतू जाके खादियां मोमो चौमिन समोसे बड़े स्वाद बनांदा मिये मैं तो जालू बाजार आउंदी जरूर ही खांदी समोसे दी प्लेट भी
1: चली जरूर पौंगी तेरे सोगी पर मैं खाने नहीं है मैं अपने डबुए दे दो फुलके ही कढ़ने हैं चल कुछ नहीं है गवाया ता फिंडुए दा सियो दिया फिंडू अड़ियां पांदा सियो दी तू अड़ियां
0: मेरी फिंडुए दा नाम बिच का ही ले दी तू है सोगी ताए नहीं है ना करे ये से बैठा रोंदा छड़ी आई एक कने चढ़िए से आप पता नहीं क्या क्या कमा दा होना चल तू खाई लेंदी मोमो चौमे ने तीसिए भी ले आएंगे खुश रहा मिया है खाने हो।

0: सुकुरे हुई सुकुरे हुई जगह खाली मैग लाया है ना, बड़ा फेमस है यात्रो चतरो मोमो चोमिनाला। आइया बैठ, इस जगह बैठ दिया।
1: ले ले ले बैठ, तीड़ कुर्सी है सरवाए, ले तीड़ ले तीड़। हाँ बड़ी भारी भीड़ हो मी शांति ऐसा दुकान दिख भला जड़ासा कि मेरी ये जानी। तू खा मैं बड़ा डब्बू खोलना
2: है। तू हाँ
1: किसे पूछ पाई किरी करिया इन्ना खाना के ही।
2: तू हाँ दसी दे ता।
0: ए भाई एक प्लेट तू हाँ चौमिन लेवा कर, एक प्लेट मोमो दी लेवा, चटनी खरी लेने मती मिर्चा मतिया पाने भाई।
1: खाई आंगी तू सब कैसी
0: प्यागत, काली काली खाद्या नहीं है, भूख नहीं लगी मिंजो। खाई लेना मैं कभी बची आंगा तो अपने फिंड हुए पैक कराई लेना मैं, मत कर तू चिंता, तू खाई ना रोटियां।
3: भाई चटनी तो दे आता इस पा है।
0: एक उन्हें अड़िए आवाज तो पछाणी पछाणी लगा थी सुनी ते
3: तागला दी ता मैं ए तू मंगी चटनी मैं
1: किरी के दिखी ले मैं ये तो सही लगा दी मिंजो खोलनी आवाज लगा दी
0: कौन दे ए जड़ी पीले चादर वाली है ना ना फोलनी कदा होना सैनी खांदी दी दी चीजा अगे परहेज कर दी से कट बाधी होंदी से और ही होनी कोई ए।
1: ओ शांति है तू मन चाह ना मन ए सही है सही वो फोलनी ये फोलनी ठहरा तू मुझे जर के दिखाना दे छड़ कुर्सी है तू। ओ मेरी ये जानी फोलनी तू। ओ मेरी ये जानी ओ शांति ये आ वो आ ए दिख भले तो फोलनी मैं तिजो गलाया था ना फोलनी यही आवाज
3: आई नहीं दिखी है फोलनी कभी पहली बारी दिखी हो आज।
1: ओ मैं शांति ये दिख दिख ही से हो
0: फोलनी तू तू भी आई है तू आत्रो जत्रो दुकान ना
3: गए हो मैं नहीं आई सकती
0: ये मैं सोचा तू तो दे चीजा खान दी नहीं।
3: हाँ तू हाँ खाई सकती हाँ
0: मैं तो तू पहली बारी दिखी मैं ना इना कंडियाले चिमचिमो पकड़ दी ये दिखे ना संगलोए की है सुरुड़ सुरुड़ करके खा दी।
3: मैं नहीं खांदी ही मैं ये बड़ी परेजन ही पर दवाई खाई खाई मेरा अंदर पड़ा सी या। मैं भी जरक री दो सूट लाने हैं नड़ाना है मैं बोले मैं भी खाई आंदी
0: ये दिख मी पाने ला दी खांदी होनी है अगे पीछे भी आंदी होनी है
3: खांदी सवाए था बड़ बड़ी लुकी लुकी बैठी पर तुहां ते गुण बचदा पता नहीं कदा ते चले आईया। नीम मैं ता खादा नहीं खादा अब तुहां के कराई है तू।
1: मैं ता मिये फुलकुआ खाना आई हो ए दिखो वाला मेरा टिफिन ए पिया
3: ता फुलकुआ खाने घर नहीं लगा टाइम दीजो।
0: सही ता मैं ही सही बोला दी बाजार आए कुछ चटपटा खाना चाहिए ना है ना। अरे मेरी तो दो प्लेटा हुई है खाली एक प्लेट में फिंड हुए पैक करानी है इन्ना तो रोटियां खा दिया है नहीं खांदी मां कंजूस मिंजो तो फुल नहीं पता होंदा ना तै आना तो जड़ी ये स्यापा फोन करके तिजो नहीं आंदी इस

0: कुनी
1: मिंजो ने कता आउना मिंजो तो कोई भी लिया लिफ्ट लुफ्ट में तो दा पंजा लांदी कता आउना आजकल किराए कितने महंगे हो यू कुनी होना बजा रहे रोज
0: तेरा भी खरा स्यापा उमरी दा स्यापा कंजूस ही रही तू
1: बैंगी अभी के खड़ो ही रंगी है उन
0: तोड़ी तोड़ी खा जेड़ा पिया रख ले बाहर निकल करनी है तो अंजने दो गल्ला
1: मिये थोड़ा दे रही है प्लेटा चिस्ता मकाना दे
0: रहना देसियो बस जानी है टाइम में दी उन करे बाहर निकल शांति है चल बाहर
2: मैं पैक कराना हा फिंड हुए
0: ना ना ना ना दिखे तू ना लेंदी पैक करवाने दा तू चल करे जेड़ा खा
2: चल भुलनी चल बसा निकली आना फिर पैदल गोना पोना
0: हाँ हो पाइये बाहर निकला बड़ा फरी अल्लाह पाए ना खिचड़ फिचड़ पाई अंदर एडिये दुकाना सारे दिखा दे
2: हाँ थकी मैं इतु बहदी बड़ा भरी खाई रखे मी केसरो
1: मेरा तो मैं तिंग रही है सभी नहीं दिता मिंजो खाना
0: जड़िया तुहाड़े ढिड फटी आने कैड़की दे दी चीजा खाई करिया दिखने ना तो हाँ जे दो टुकड़े छड़े आई है ना तो कोई बड़ा बड़ा नुकसान नहीं होया
1: ता तिन्नी पैहे पूरे नहीं कट्टे तिन्नी को तो पैहे काट कटने मिंजो ते
0: पैसे रोंदी रहंदी हाय पैसा सेहत नहीं दिखदी ताजी बीमार पे उठी है
1: पैसा नहीं होगा मैं तो कदर भी नहीं होंगी पैसा है तो क्या भाई रोड ही देना सारा गुआई देना
2: हाँ वो ये नहीं पचना हो अजे नहीं पचना कई गुलाई भूली मैं ये जड़ा खाद्य ना लगी पे हूं मिंजो पेटे पीड़
0: लगनी है जड़ी है तेरा तोड़ है पीड़ ये कोई खरिया चीजा ने तेरे टिड्डे ना मरोड़ पाने कर कई खरिया चीजा तेरे टिड्डे तीड़ी लिया हाली तो फुलनिया तो तोड़ है पौनी मरोड़ रुक फुलनी है रुक तुम्हें जार बरी ने समझाया कि दे दी चीजा मत खा कर अपू खा दी फिंडुए भी ले चलिए पीरी गला दी मेरे फिंडुए पेटे पीड़ पे ही ताबो केसरो मैं स्कूले नहीं भेजा मऊ ऐडा नी करना ता लादी तसी उदिये निकलना जालू दिख मिये फोलनी अपने तिसी फिंडुए ना पैगटा पकड़ाई सड़दी मैं तो जालू जा कदी रोटिया टुकड़ा तिदा थे दिखिया नी टोफिया खादा पैगटा खादा
2: ए दिख ए अपनी कुड़िये दिंदी नी ना कने मेरे फिंडुए बाजीए घर दी इकलौता मेरा फिंडू लाडला खाना नी तिन्नी
1: हाँ ये केसरों में भी दिखे कई बारी जालू मैं अक पानी ना फेंड हुए हो ता पैकटे पिट्ठी पचा लगाई लेंदा पे कोई दिखा दा नहीं है मिंजो
2: तुम्ही लग पे मेरे फेंड हुए बोलना हुन इको देंगे तो सा
1: मिये केसरो एक गल दस्से ए मेरा जड़ा मेरे पेटे जो गोला बने है इन समोसा खाई बने होंगा
0: ना तो तीजो डॉक्टर नहीं दस्या हा तालू है कि छड़ी दे बारी है चीजा खाना में ओ नियन खरिया है मेरे फुलकिया दिखी बढ़िया सईया जे खरिया रहन है चार त्याड़े जीना ता इस अलक जड़ के खाना छड़ी दिया शांति ये अली तिजो पता नहीं है अली तो तेरी अजीबा स्वाद बैठे है ना ओम ये बड़िया परी बुरिया बड़ बड़िया बीमारियां इना जंक फूडा ने तैयार हो आई है अपू भी खा दी फिंडुए भी खुआ दी
2: ताई मेरे फिंडुए पेटे मी पीड़ रेंदी कने कब्ज भी रेंदी तीसियो
1: हाँ ते वो ए सही है गल ठीक गलाई न केसरो
0: कसम खा मेरे सामने दोनों कि अज दिने बाद नहीं खानी ये चीजा
1: कुदी खानी तेरी
0: ओ मेरी खाई ले आड़ियो तोली चली यंगी
2: ना ना नी जाना दिनी है तिजो करना पोना है सुधार बच्चे कने अपनी सेहता दा सवाल है पर केसरो मिंजे एक गल दस मी आपू ते नी खवांगे पर परौने आंदे सभी ते पैकटा खरीदी के लोंदे तेदा क्या करना
1: ते परौने गलाईता ना दो कड़िये बुरे बणयो खरे गलाईता पे होण होता ए पैटक पुटक नी लोंदे
0: ओ मिये फोलनी ते मेरे मुम्मे दी गल मैं ते गलांदी बेरियां कुड़िये खबरदार कुणी ए पैकेट लंदे ता फ्रूट ले आए पोए कने मिये मेरे प्रोणे बड़े फरी डरदे मिंजो ते सब फ्रूटा ले करिया उंदे
1: मैं ते नहीं खांदी पाईया मैं ते कन पकड़े अज्जे बाद कने तू भी शांतिए
2: हाँ अड़िए केसरो गल्ला सुनी के लगा था ए चीजा ता बड़िया बुरिया आहा ता चार दाड़े जीना कोई चक्कर नहीं पर मी बच्चे जिंदगी बच्चे दी सेहत कयो खराब करनी हाँ जड़े से आपा मैं नार कने सेब खरीदी लेंदी अपने फिंडुए
1: चला चला हुण बस भी आई है खड़ूई है बस आला भी
0: खरीद तोली ले ले ले ले किलो

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
3: हेलो धर्मशाला,
4: हेलो धर्मशाला,

जी हाँ, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी वही जानी पहचानी सी, जहाँ पर आपको इंटरटेन करने के लिए लेकर आते हैं हम कुछ बेहतरीन से प्रोग्राम। जी हाँ, शुरू हो चुका है यहाँ पर आप सभी का पसंदीदा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो धर्मशाला। हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत एकदम लाइव। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, बस डायल करना है हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391। हम भी एकदम तैयार बैठे हैं आपकी पसंद पूरी करने के लिए, तो जल्दी से कॉल कीजिए 01892224391 पर। वेल, आपको ये भी बता देते हैं कि आज इस कार्यक्रम में गाना सुनने के लिए आप किन फिल्मों के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। आज की वो फिल्में हैं बागी, काबिल, खट्टा मीठा, लव आजकल, लुक्का छुपी, क्वीन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तमाशा, एक विलन और यारियां। इन मूवीज में से अगर आपकी चॉइस का कोई सा भी गीत है तो आप हमें कॉल कीजिए 01892224391 पर।

0: तो चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं कहाँ से हमें वो कॉल कर रहे हैं। हेलो
1: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं और सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, उसके बाद आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, अभी मैं छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी कार्यक्रम में स्वागत है, ये बताइए किस फिल्म से गीत सुनवाएं?
1: जी
0: किस फिल्म से गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम बता देंगे क्या?
0: जी एक बार हम फिर से आपके लिए फिल्मों के नाम दोहरा देते हैं। आज की फिल्में हैं बागी 2, काबिल, खट्टा मीठा, लव आजकल, लुक्का छुपी, क्वीन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तमाशा, एक विलन और यारियां।
1: लव आजकल से कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
0: लव आजकल फिल्म से।
1: जी
0: आपने कॉल किया उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आपके लिए प्ले करना चाहेंगे आपकी चॉइस पर ये गीत।
1: बहुत बहुत
0: जी कॉल करने के लिए शुक्रिया। आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़िए अपनी फ़ोन कॉल्स के साथ और जल्दी से डायल कीजिए

0: जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो धर्मशाला इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। कोई बात नहीं, आप फिर से डायल कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर, जल्द ही हमारी आपसे बात हो पाएगी। और इसी बीच देखिए अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए
1: आज।
0: जी जी,
1: स्टूडेंट ऑफ ईयर का फिल्म का कोई भी बढ़िया गीत सुना दीजिएगा, स्टूडेंट ऑफ ईयर का।
0: जी जी जी, आपको जरूर सुनवाएगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से गीत। और आप ये बताइए कि लगता है इनका संपर्क जो है हमसे टूट चुका है। कोई बात नहीं, और इन्होंने अपनी फरमाइश तो हम तक पहुंचा दी थी, तो इनके लिए प्ले करते हैं हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का ये गीत।

0: से। हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से हमें कॉल किया है?
1: जी, सविता बोल रही हूँ मैम, रानीताल से।
0: सविता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज इस प्रोग्राम में कौन सी फिल्म से गीत सुनने के लिए आप हमें कॉल कर रही हैं?
1: जी, तमाशा फिल्म का गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: तमाशा फिल्म से?
1: साथ हो।
0: तमाशा फिल्म से?
1: हाँ जी
0: जी, आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे। आपकी चॉइस पर तमाशा फिल्म का ये गीत आपने कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

श्रोता, हेलो धर्मशाला कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से 9:30 से आप सुन पाएंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से। इस चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी में जागरूकता शिविर आयोजित। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा हो चुका है। स्वगणना की ऑनलाइन विंडो 15 जून रात 12 बजे बंद हो गई है। अब आज 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान व परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जानकारी देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निदेशालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग दें। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए घर आने वाले प्रगणक के पहचान पत्र पर लगे QR कोड को स्कैन करके उसकी पहचान जरूर जांचें। जिन लोगों ने पहले ही ऑनलाइन पोर्टल पर स्वगणना कर दी है, उन्हें प्रगणक के आने पर सिर्फ स्वगणना ID देनी होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सेवाएं, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। धर्मशाला में कल आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार गरीब कल्याण और तीव्र विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ते देखा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विकास और विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिला ये बजट पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 27 गुना अधिक है, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
2: तो रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर ऑन एन एवरेज कांग्रेस के शासनकाल में 108 करोड़ रुपए के आसपास का डिवोल्यूशन आता था। इस वर्ष एक बड़े प्रयास के चलते हुए सरकार ने 29,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, ताकि रेलवे के नेटवर्क को हिमाचल में उत्कृष्ट कोटि का और विश्व स्तर का बनाया जा सके। केंद्र की सरकार ने इन 12 वर्षों में पूरे भारत के लिए और यहाँ हिमाचल के लिए अनेक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
0: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी कर 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से खरीद की जा रही है, जिससे किसानों में भारी उत्साह है। इस वर्ष कृषि विभाग ने चंबा जिला में 175 किसानों से कुल 134 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिमला जिला के जुब्बल में युवा मंडल मंढोल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत यहां आयोजित ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विशेष अतिथियों सहित हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को बान और देवदार जैसे पेड़ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए जा रहे हैं। युवा मंडल मंढोल के अध्यक्ष बॉबी जस्टा ने बताया कि स्मृति चिन्ह के रूप में पेड़ प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वृक्षारोपण के साथ ही इन पेड़ों की देखरेख और संरक्षण

0: भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल से क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगभग 150 से अधिक पेड़ों को रोपा जा चुका है, जबकि बीते वर्ष भी युवा मंडल की पहल से लगभग 1000 से ज्यादा देवदार वृक्षों का रोपण किया गया था। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पधर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पद्दर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में उप मंडलाधिकारी पद्धर सुरजीत सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि नशा आज समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। शिविर के दौरान प्रशिक्षुओं ने चित्रकला, स्लोगन लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र की देवांशी शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। देवांशी की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। देवांशी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर ये उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर विभिन्न सामाजिक व क्षेत्रीय संगठनों ने शुभकामनाएं दी है। देवांशी के पिता NTPC में कार्यरत है, जबकि दादा डॉक्टर OP शर्मा हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित है। प्रदेश में बीते कल मौसम के करवट बदलने से कई जिलों में बारिश हुई और वहीं ओलावृष्टि से भी विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान के समाचार है। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल की रूपी वैली और शिमला जिला के चौपाल और रामपुर क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं इन क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट के साथ ही मटर और अन्य नकदी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। विभाग ने 18 और 19 जून को प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, नगर निकायों में विधायकों का वोटिंग अधिकार बहाल। अमर उजाला और दिव्य हिमाचल ने खबर को एक जैसा शीर्षक दिया है। इनके शब्द है, नगर निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डाल सकेंगे विधायक। मैदानों में हुई बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और गिरे ओले, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, तापमान भी गिरा, प्रदेश में 18 जून तक खराब रहेगा मौसम। दैनिक जागरण ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को शीर्षक दिया है, CBSE स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से। इस चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी में जागरूकता शिविर आयोजित। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
2: श्रोता, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो धर्मशाला प्रोग्राम में। लाइव फोनिंग प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के साथ। आप हमें कॉल कीजिए 01892224391 पर। जिन फिल्मों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं वो फिल्में हैं बागी 2, काबिल, खट्टा मीठा, लुक्का छुपी, क्वीन, एक विलन और यारियां। इन मूवीज में से अगर आपकी चॉइस का कोई सा भी गीत है तो जल्दी से कॉल कीजिए 01892224391 पर। विल, आपकी कॉल्स को हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।
3: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
5: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
4: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
5: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
4: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
5: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हेलो धर्मशाला प्रोग्राम। करते हैं अगले कॉलर से बात। हेलो।
8: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहां से हमें कॉल किया है?
8: मैडम जी, मैं पॉल बोल रहा हूं, जलंधर पंजाब से।
2: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि इस प्रोग्राम में किस फिल्म से गीत सुनने के लिए आज आप हमें कॉल कर रहे हैं?
8: मैडम जी, खट्टा मीठा फिल्म का सुना दीजिए कोई भी।
2: खट्टा मीठा फिल्म से जी, आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं आपकी चॉइस पर खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत। जी शुक्रिया, शुक्रिया। तो चलिए अपने कॉलर की चॉइस को पूरा करते हैं और इन्हें सुनवाते हैं खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत। आप यूं ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिए अपनी फोन कॉल्स के साथ और सुनती रहिए अपनी पसंद के गीत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 3,999 per month.

0: उज्जैन ग्राम बछोड़ा से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: जी प्रेम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आज प्रोग्राम में किस फिल्म से गीत सुनने के लिए आप हमें कॉल कर रहे हैं?
0: फिल्म आप कोई सी भी सुनवा दीजिए, गीत हमें पसंद रहेगा जो आपने बताई है ना फिल्में।
1: जी
0: जी, उनमें से कोई सा भी एक गीत सुनवा दीजिएगा, बट हम कार्यक्रम सुन रहे हैं मोबाइल ऐप से।
1: चलिए,
0: और फोन इन प्रोग्राम पार्टिसिपेट भी करते हैं। आपके उधर मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो बहुत ही सुहावना बना हुआ है। देखिए, पहाड़ों में जो है वो बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी हो चुका है, और जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है।
0: जी, अभी हमारे यहाँ पे भी 2-4 दिन से थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है।
1: जी,
0: पहले तो यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था।
1: चलिए, अब आपको गर्मी से जो है वो निजात जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि जो है वो प्री मॉनसून की बारिश जो है वो धीरे धीरे पूरे ही भारत में जो है वो होनी शुरू हो चुकी है, और यहाँ से हम प्यारे प्यारे से गीतों की बौछार तो है आप तक पहुँचा ही रहे हैं। आपने कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं काबिल फिल्म का ये गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो धर्मशाला। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ जाइए अपनी फोन कॉल्स के साथ और सुनिए अपनी पसंद के गीत। और इसी बीच जो एक कॉलर जो है हमें कॉल कर रहे हैं, जानते हैं उनसे। हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए कौन बात करे और कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं।
7: जी, मैं राहुल से बोल रहा हूँ।
6: जी, स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। ये बताइए किस फिल्म से गीत सुनने के लिए हमें कॉल कर रहे हैं। फिल्में हैं बागी 2, लुक्का छुपी, क्वीन, एक विलन और यारियां। चलिए, आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं यारियां फिल्म का ये गीत। आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

0: हेलो धर्मशाला प्रोग्राम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और चलिए प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि वो हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, जो है अगले कॉलर ज़रूर ट्राई करेंगे, उनसे बात होगी। और कार्यक्रम में जिन फिल्मों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी की वो फिल्में हैं बागी 2, लुक्का छुपी, क्वीन और एक विलेन। अगर इन मूवीज़ में से आपकी पसंद का कोई सा भी गीत है तो जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हो और कहाँ से कॉल किया है?
1: मानस शर्मा बात कर रहा हूँ, हैदरा से।
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जल्दी से आपकी फरमाइश पर आते हैं कि आप कौन सी फिल्म से गीत सुनना चाहेंगे।
1: मैं एक फिल्म का वो गलियां सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: चलिए, आपके लिए आपकी चॉइस पर हम प्ले करने जा रहे हैं ये गीत। आपने कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अपने आखिरी कॉलर की फरमाइश को पूरा करते हैं और उन्हें सुनवाते हैं एक विलन फिल्म से ये गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमारा आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो धर्मशाला अब यहीं पर संपन्न होता है। हमारे जितने भी लिसनर्स इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े या फिर घर बैठे हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
1: हेलो धर्मशाला,
2: हेलो धर्मशाला।

गीतों का कारवां कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म के इस खूबसूरत ट्रैक के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत के लिए संगीत दिया है राजेश रोशन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिर से आइए सुनते हैं कारवां फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का है।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लेकिन फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, आवाज है लता मंगेशकर की।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुदरत फिल्म से ये गीत, राहुल देव वर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मशाल फिल्म से ये गीत। जावेद अख्तर की रचना है और गीत गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है शिव कुमार ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोना की आवाज में ये लोकगीत।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। खूबसूरत थी कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच की आवाज में ये खूबसूरत सा पहाड़ी लोक गीत।
2: वहाँ पर राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। धोबी के लाख मना करने पर भी धोबन नहीं मानती और

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: धर्मशाला केंद्र भी रिले।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा हो चुका है। अब आज 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान व परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जानकारी देश के विकास योजनाओं के

0: बेहद अहम मानी जा रही है। निदेशालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग दें। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सेवाएं, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। धर्मशाला में कल आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पहली बार देश ने गरीब कल्याण और तीव्र विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ते देखा है। देश सहित प्रदेश के लिए भी 12 वर्षों में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और पूर्व की सरकार की तुलना में कई गुना अधिक बजट हिमाचल के लिए आवंटित हुआ है।
2: हिमाचल के संदर्भ में हम कहें तो 4 से 14 के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू का डिवोल्यूशन था स्टेट को, वो 12,000 करोड़ रुपए था और 14 से 26 के बीच में 76,000 करोड़ रुपए। कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया। बिलासपुर के एम्स के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना, हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना, मैंने अटल टनल का पूर्व में भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,300 कुछ करोड़ रुपए आया, जो कि 4 से 14 के बीच में इस मद में कुछ आता ही नहीं। केंद्र की सरकार ने इन 12 वर्षों में हिमाचल के लिए अनेक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
1: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आज आकाशवाणी शिमला का स्थापना दिवस है। वर्ष 1955 को आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक व मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें हिमाचली संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, खेल जगत, किसान बागवान और समाचार के अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल है, जो हर वर्ग को त्वरित सूचना देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ आकाशवाणी शिमला अपने स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिमला जिला के जुब्बल में युवा मंडल मंढोल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत यहां आयोजित ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विशेष अतिथियों सहित हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को बान और देवदार जैसे पेड़ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए जा रहे हैं। युवा मंडल मंढोल के अध्यक्ष बॉबी जेस्टा ने बताया कि स्मृति चिन्ह के रूप में पेड़ प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वृक्षारोपण के साथ ही इन पेड़ों की देखभाल और संरक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल से क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगभग 150 से अधिक पौधों को रोपा जा चुका है, जबकि बीते वर्ष भी युवक मंडल ने लगभग 1,000 से ज्यादा देवदार वृक्षों का रोपण किया था। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 20 रुपये की बढ़ोतरी कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से खरीद की जा रही है, जिससे किसानों में भारी उत्साह है। इस वर्ष कृषि विभाग ने चंबा जिला में 175 किसानों से कुल 134 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान समारोह विशेष लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। कांगड़ा जिला के विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आर मिहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शक्ति चंद डोगरा व साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी की आवाज में ये लोकगीत।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रेशमा गुलेरिया की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
0: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह यह तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों।
2: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
3: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
3: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
4: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
5: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
4: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
5: यस। साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से

0: जी
1: जोंसी तुम्हारी दोस्त है।
0: जी हाँ।
1: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
0: जी डॉक्टर साहब।
1: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
0: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
3: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
0: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
0: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
0: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
0: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ हाँ।
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ, मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉन्सी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे।

0: लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: टू, ओ, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ,
2: हाँ,
4: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ, हाँ।
1: दो दिन और बीत

0: गए। वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
3: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ, वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ, वही मिस्टर बेरमैन।
3: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
3: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
4: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
3: पेंटिंग?
2: हाँ।
3: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
3: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
3: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
3: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
3: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
3: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
3: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू, मास्टरपीस।
2: हाँ,
3: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
4: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को

0: श्रद्धांजलि दे रही हूं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर हाजिर है हम आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्लौरी फिल्म के इस गीत के साथ।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एयरलिफ्ट फिल्म से।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, बातों और गीतों के इस मिले जुले सफर में एक बार फिर से हाजिर हैं हम। और बता दूं, आज मैं हूँ आप सबके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानती हैं, मंगलवार का ये खूबसूरत सफर रहता है सजीव फोन इन, यानी कि फ़ोन पर आधारित। और कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं फ़ोन के माध्यम से, और बातें तो करते ही हैं हम, साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे खूबसूरत से गीत उन फिल्मों से जिन्हें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले स्टूडियो का नंबर आपको बता देती हूँ जो आपको डायल करना है। जी हाँ, नंबर है 01892224391। जी हाँ, 01892224391। और जो आज की हमारी चुनिंदा फिल्में हैं जिनके गीत आप आज सुन सकती हैं, उनके नाम हैं आशिकी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बर्दाश्त, बोल राधा बोल, देवदास, दिल है कि मानता।

0: नहीं, दिल दिल तो पागल है, दिल वाले, और कभी अलविदा ना कहना, और साथ में कर्ज। तो ये है हमारी आज की फिल्में, और बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं। इनके गीत आज आप सुन सकते हैं, और देखते हैं कार्यक्रम की पहली कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, तो सखियो जब भी कार्यक्रम में आप फ़ोन करती हैं तो सिग्नल का ध्यान रखें, ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए, और सिग्नल का भी ध्यान रखना है, और जब भी कॉल करें तो बात ज़रूर करें। हेलो हेलो हेलो हेलो, जी हाँ सखी, 01892224391 ये है स्टूडियो का नंबर, और फोन लगातार आ रहे हैं, लेकिन हेलो।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: मैं शिवानी बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सादाफीबा से।
0: जी शिवानी, क्या करती हैं?
1: मैम मैं बेकरी में शेफ हूँ।
0: बेकरी में शेफ हैं? अच्छा, अपनी बेकरी है आपकी?
1: नहीं मैम, किसी और की है, मैं तो वहाँ पे काम जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, जॉब करती हैं। कैसा लगता है
1: हाँ
0: शिवानी
1: जी
0: ये काम?
1: मैम, सब अच्छा ही है। वो तो
0: अच्छा
1: आप
0: है।
1: किस मैम, वो तो इंसान के सीखने पे होता है ना, कि उसमें कितनी रुचि है सीखने की, वो कितना कर सकता है।
0: जी,
1: हाँ
0: सीखने
1: जी
0: पर भी होता है और अपने इंटरेस्ट पर भी होता है शिवानी। अगर आपको
1: हाँ
0: इंटरेस्ट है तो तभी आप कोई भी काम अच्छे से सीख सकती हैं, है
1: जी
0: ना?
1: मैम, हाँ जी यस
0: तो आपको है बेकरी में, मतलब बेकिंग में इंटरेस्ट?
1: मैम, मेरे को
0: जी
1: इस बेकरी में हो गए 3.5 साल लगे हुए। हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: तो
1: मैम, एक्चुअली आज मैंने बड़े टाइम से वेट करा है, मेरा रेडियो खराब था, यहाँ पे लोकल ठीक हुआ नहीं, मैंने तलवाड़ा से ठीक करके मंगवाया है,
0: अच्छा
1: तो आज जाके एक अलग ही खुशी है। मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉल की थी, सेम वैसा ही फील हो रहा है।
0: अच्छा वैसा ही लग रहा है। कितने टाइम बाद कॉल कर रही हैं?
1: मैम 2 मंथ से मेरे रेडियो को खराब हुए हो गए। हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: तो सजीव फोन इन भी अभी इसी महीने से शुरू हुए हैं दोबारा से, तो आप निराश ना हुए। और
1: मैम,
0: शिवानी, साथ में क्या करना अच्छा लगता है? गाने सुनना अच्छा लगता है?
1: म्यूजिक मेरा पूरा दिन, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से रेडियो ठीक करवाया है, ये साथ में लगा वो काम हमारा चलाता है, पूरा दिन चला रहता है, मैं पूरा दिन सुनती हूँ।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अब आपका रेडियो ठीक रहे, आप हमसे जुड़ी रहें।
1: मैम
0: जी, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आज?
1: दिल तो पागल है मूवी का सुना दो, कोई भी।
0: कोई सा भी?
1: हाँ जी
0: जी, तो आपके लिए डेडिकेट करती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शिवानी सुनिए, और शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप? इंदु जी
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए। काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी, काफी दिनों के बाद। तो कैसा लग रहा है आपको?
1: बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने
0: और सुनाइए।
1: सोचा कहीं ये प्रोग्राम आप लोगों ने कहीं बंद ही तो नहीं कर दिया। यही तो था हमारा सहारा।
0: अच्छा, नहीं, प्रोग्राम तो बंद नहीं हुए हैं।
1: काफी काफी टाइम के बाद किया ना ये प्रोग्राम फिर से शुरू, तो फिर ऐसा लगा बीच में कि पता नहीं कहाँ चले गए ये प्रोग्राम लेके।
0: नहीं, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। और अब कैसा लग रहा है आपको?
1: अब तो बड़ा अच्छा, बड़ा ही अच्छा। और आप आए स्टूडियो में तो मैम चार चांद लग जाते
0: चार चांद लग जाते
1: हैं।
0: हैं। और मौसम कैसा है आपके यहाँ इंदु?
1: मौसम मैम बारिश हो चुकी है तो अभी धूप
0: ठंडा
1: छाई
0: ठंडा
1: है,
0: हो गया है थोड़ा, जो
1: ठंडा ठंडा
0: इतनी
1: मौसम हो गया।
0: गर्मी हो गई थी
1: हाँ जी मैम, अब मौसम बल्कि बरसात ही शुरू हो गई अब तो मैम,
0: जी। इस बार बरसात जल्दी शुरू होगी, है ना?
1: कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है मैम।
0: और बताइए कैसे
1: आपके
0: लग
1: ना
0: रहे हैं
1: रुशाला का प्रोग्राम, मौसम भी बड़ा अच्छा था।
0: जी?
1: हम गए थे थोड़े टाइम पहले, वाह
0: अच्छा।
1: मैम वाह, तो जन्नत ही है।
0: और
1: इतना
0: हमसे
1: अच्छा,
0: बिना मिले चले गए आप?
1: क्या करें मैम, इतना टाइम ही नहीं बचा था ना, सारा दिन ऐसे ही हो गया। फिर शाम को आते आते लेट हो गए, ये तो आपसे जरूर मिलते मैम।
0: जी, चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं, है ना? और
1: आपसे मुलाकात कभी कभी तो होगी मैम, कभी ना कभी तो जरूर होगी,
0: जी, वही मैं कह
1: उम्मीद
0: रही
1: पे
0: कि
1: दुनिया
0: उम्मीद पर
1: कायम है।
0: दुनिया
1: हाँ
0: कायम है। हम भी ये
1: मैम
0: उम्मीद
1: बिल्कुल,
0: रख सकते हैं।
1: हाँ जी मैम बिल्कुल
0: तो इंदु जी, बताइए कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: मैम, बड़े अच्छे कार्यक्रम तो मैम आपके शुरू से काफी अच्छे हैं। तो इनके बिना तो हमारा टाइम पास नहीं होता। मैं तो बोल रहा ना कि रेडियो बंद करके क्या करें वो समझ में नहीं आता है। रेडियो चला हुआ है तो सब पता चलता है, न्यूज भी क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रोग्राम भी सब। मैम बड़े अच्छे हैं।
0: जी, और शुक्रिया उसके लिए इंदु जी। और आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं फिर?
1: मैम आशिकी पिक्चर का नजर के सामने।
0: जी बिल्कुल, नजर के सामने बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है और हमने प्ले कर दिया है,
1: ओके मैम,
0: और साथ में सुनते हैं, है ना?
1: हाँ जी मैम बिल्कुल, आप
0: शुक्रिया
1: भी और हम भी।
0: जी, शुक्रिया फ़ोन
1: ओके
0: करने के लिए।
1: मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए अपना।
1: मैं तानी। ठीक है मैडम जी, आप बताइए, आप अच्छे हो?
0: हाँ जी, हम भी बढ़िया हैं, ठीक है। और आपसे बातें कर रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: और जम्मू के क्या हाल चाल
1: बहुत
0: है, मौसम कैसा है?
1: बहुत मौसम मैडम जी, बहुत गर्मी पड़ रही है जम्मू में, सभी इधर बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: अच्छा, तो अभी मौसम गर्मी वाला है, बारिश वगैरह कुछ नहीं है?
1: सुबह बात तो हुई थी मैडम, थोड़ी हुई थी।
0: अच्छा, और आजकल तो बारिश के बाद और ज़्यादा गर्मी लगती है ना?
1: हाँ, जब बात हो जाती है ना उसके बाद बहुत गर्मी लगती है। हाँ
0: हाँ जी।
1: मैडम जी,
0: और बताइए, जम्मू के क्या हाल चाल है, क्या कुछ नया चल रहा है आजकल?
1: सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मैडम जी।
0: अच्छा, ठीक चल रहा है, ठीक ही चलना चाहिए।
1: मैडम, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, क्या बात थी मैडम जी?
0: कोई बात नहीं थी।
1: हाँ, मैं एक दिन सोच रही थी ना, क्या मैडम से बात नहीं होती।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, आज हो गई है ना।
1: हाँ, आज होगी मैडम जी।
0: आप सभी चाहते थे मुझसे बात हो, तो आज होगी। और कैसा लग रहा है आपको?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी।
0: अच्छा जी, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे फिर आज?
1: बोल राधा बोल का सुना दो।
0: कौन सा गीत?
1: बोल राधा बोल,
0: टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: हाँ हाँ तुमने क्या
0: जी
1: किया।
0: जी आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का टाइटल ट्रैक, और शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: ओके मैडम जी।

0: ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार जी। सविता जी, कैसी हैं आप?
2: जी बड़ी हैं, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए हैं ना? नहीं, एक तो
1: जी बहुत दिन बाद आए, बारिश लेकर आए। कैसा लग रहा है फिर आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैंने तो पता क्या सोचा, मैंने सोचा प्रोग्राम ही बंद हो गया है।
1: नहीं, प्रोग्राम तो अभी तो आ रहा था। प्रोग्राम 2 हफ्तों से तो सजीव फोन ही नहीं चल रहा था।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 3-4 हफ्ते हो गए ना, नहीं आ रहा था प्रोग्राम, तो मैंने सोचा शायद बंद कर दिया होगा, तो आपसे बात भी नहीं होनी अब तो। पर चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ मैम, आपसे बात हो रही है
1: जी। और हम भी बहुत खुश हैं सविता जी। रानीताल के क्या हाल चाल हैं
2: जी? अच्छे हैं, मौसम भी ठीक है मैम, अब तो बारिश भी हो रही
1: बारिश
2: है।
1: हो रही है
2: नहीं तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी मैम यहाँ पर।
1: जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी कुछ दिन हुई, पर बहुत ही तेज गर्मी थी, है ना?
2: हाँ जी मैम।
1: जी, और सविता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं?
2: जी बस कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ, बस यही है, बात हो रही है। मैंने सोचा बंद ही हो गया ये प्रोग्राम लाइव, चलो आपसे बात होती थी, है ना? नहीं,
1: हाँ जी बिल्कुल, हमें भी
2: पिछली
1: बहुत
2: बार
1: अच्छा
2: तो
1: लगता
2: चलो
1: है।
2: ज्योति मैम आए थे पिछली बार, तो चलो आपसे भी, आपसे बात बहुत अच्छा लगता है करने में।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपनी सखियों से बातें करना। और आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं फिर?
2: जी दिल फिल्म का सुनवा दीजिए मैम, वो हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले।
1: जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। और सविता जी शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। कैसी हैं आप?
1: मैम बढ़िया हूँ।
0: कैसी हैं आप?
1: मैम अच्छी हूँ। बड़े दिनों के बाद सुना मैम आपको। हाँ
0: मुझे
1: जी
0: जी इस कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद सुना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: वैसे तो सुनते रहते होंगे
1: हाँ जी मैम।
0: जी। तो कैसा लग रहा है फिर?
1: अच्छा लग रहा है मैम। हाँ जी मैम।
0: जी
1: और हम जैसे ये अभी संडे को मैम घूमने गए हुए थे हम ना ऊपर मैकलोडगंज में, तो
0: अच्छा
1: मैंने अपनी बेटी को बताया मैम कि ये देखो यहाँ से होता है प्रसारण जो हम सुनते
0: हाँ जी।
1: हैं, तो वो हैरान हो गई, मम्मा यहाँ से कहाँ से सुनाई देता होगा हमें। जी
0: अच्छा, घूमने आए थे आप तो। कैसा रहा आपका ट्रिप?
1: मैम बहुत खज्जड़ हुए।
0: क्यों, बहुत रश था है ना?
1: बोट हाँ, मैम ट्रैफिक में ही फंसे रहे आधा दिन।
0: तो आप लोकल होते हुए, मतलब आपको पता होता है कि वीकेंड है और आजकल के मौसम में बहुत रश होता है, तो
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: किसी फ्री टाइम में
1: वो तो
0: आते?
1: मैम उसके मैच के चलते हुआ था ना ज्यादा रश,
0: अच्छा।
1: और वैसे भी संडे था ना, पर मिस्टेक लग गई थी।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ
0: वीकेंड पे तो
1: जी
0: मतलब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी मैम।
0: जी। और क्या कुछ काम लगाया है आजकल आपने?
1: मैम हो गई तैयारी है मैम, वो लगाने की,
0: ध्यान
1: वो
0: लगाने
1: लगाने
0: की?
1: की। हाँ जी हाँ जी
0: जी जी
1: तैयारियां हो चुकी हैं, अभी बारिश पे ये डिपेंड की कब तक आता है, तो फिर शुरू हो
0: और
1: जाएगा काम।
0: बीच में जब बारिश हो रही है तो कुछ लोग तो लगा भी रहे हैं।
1: हाँ मैम जिनको अपनी वो कूलें होती है ना, साथ में थोड़ी बारिश हो जाती है और बीच में कूलें हो जाती हैं, तो फिर उनसे हो जाता थोड़ा बहुत ना।
0: जी
1: और जैसे अगर ऐसे इसके सहारे बैठे रहें तो फिर तो सूखा पड़ जाता ना, फिर बड़ी मुश्किल हो
0: फिर
1: जाती
0: बड़ी
1: है।
0: मुश्किल होती है
1: हाँ जी मैम
0: जी। चलिए, तो जब भी काम करें ध्यान पूर्वक करें, है ना।
1: हाँ जी मैम बिल्कुल जी।
0: और कौन सी
1: मैम
0: फिल्म का गीत सुनवाएं?
1: सुना देना जो भी बचा हुआ होगा
0: बहुत सी
1: अच्छा
0: बची
1: सा
0: हैं,
1: गीत। हाँ जी
0: आप
1: अच्छा
0: बताइए
1: सा।
0: कौन सी।
1: कौन सी मूवी है मैम?
0: कर्ज है, कभी अलविदा ना कहना, दिल वाले, देवदास, बर्दाश्त, बद्रीनाथ की दुल्हनिया।
1: मैम बद्रीनाथ की दुल्हनी है, मैं सुना देना।
0: जी, इस फिल्म का कोई सा भी
1: हाँ जी मैम
0: ठीक है, आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: ओके
0: बड़े ही कम
1: मैम
0: शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

इसी खूबसूरत गीत के साथ सखियों हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिर में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। माफ़ी चाहेंगे उन कॉलर से जो इस समय फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि आपसे बात की जाए। तो यही कहूँगी, अगले मंगलवार ज़रूर समय से फ़ोन करें और अपने इस खूबसूरत

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से। पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22

जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियाँ वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only a non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, made these remarks while addressing the intergovernmental negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said, UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
1: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the afternoon session today. The Sensex rose 348 points to 76,613, while the Nifty added 80 points to 23,934 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: खतों के पन्नों पर शब्द नहीं, भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नज़र में तो बहुत आते हैं। अब जो नज़रों को भा जाए, बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर ज़िंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफ़ी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही ख़तों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो ख़त लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियाँ कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, SMS पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से एक खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज़ पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतज़ार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे

अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूँ वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुँचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं। क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि ख़त लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फ़ोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं

कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्वेता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है, मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफ़ी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपये में फिल्म देखी थी यार, 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वहीं है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहाँ आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपका मन बसता है? ज़रूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हों, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ आप घूम कर आए हों, या कोई पुरानी याद, जहाँ पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज़ पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज़ पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज़ पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवे नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताज़ा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहाँ जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहाँ पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाज़त चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में। मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफ़र में आपका साथ दिया, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसे जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है, मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
4: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
6: UNSC reform would be grossly inadequate.
7: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना

0: की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने। यह था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नज़र लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को। इस गीत में मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी के संभव

0: ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे,

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, संगम फिल्म से हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: तुम कम सिन

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर आज माईगोव की एक पोस्ट साझा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। माईगोव पोस्ट के में पिछले 12 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में आए बदलाव का उल्लेख किया गया है। इन बदलावों से आवाजाही तेज हुई है, लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है और विकास के नए मार्ग खुले हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। आज से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये डेटा देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद जरूरी होगा। निदेशालय ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के बारे में पेश है ये रिपोर्ट।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
0: प्रदेश भाजपा महामंत्री पायल वैद्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बार बार किए जा रहे संशोधनों को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रदेश की महिलाओं से बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाई। पायल वैद्य ने कहा कि सरकार ने इस योजना का दायरा और सीमित करते हुए 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों को भी इस योजना से बाहर कर दिया है, जिससे कांग्रेस की कथनी और करनी जनता के सामने आ गई है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने आज सचिवालय

0: के बाहर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ है। दृष्टिबाधित जन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक दृष्टिबाधितों की जायज मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
1: मेरा नाम राजेश ठाकुर। जैसे ही दिव्यांगजनों की समस्या आ रही है तो सरकारी विभागों में क्लास फोर का बहुत अधिक मात्रा में हमारा बैकलॉग बचता है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए और पेंशन भी हमारी 5100 रुपए महीने की स्वस्थ दिव्यांगजनों की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों को लाया जाए और हमें जो सारा पेंशन मिलती थी वो भी 12 महीने से बंद पड़ी है उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और यूडीआई कार्ड वो भी लागू किया जाए।
0: इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं कुल्लू जिला की चिट्ठी। लेखक हैं आशीष कुमार शर्मा और वाचिक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: राष्ट्रीय नार्को समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला में नशा रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा के साथ भविष्य की ठोस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत स्तर पर सतत निगरानी, जनभागीदारी और सामुदायिक जागरूकता के बिना नशे के विरुद्ध अभियान को प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सभी पंचायतों में नशा

0: उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत स्तर पर सतत निगरानी, जनभागीदारी और सामुदायिक जागरूकता के बिना नशे के विरुद्ध अभियान को प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सभी पंचायतों में नशा का आयोजन मंडी के मंडलायुक्त आर के पूर्थी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के विभिन्न मसलों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परियोजना प्रभावित 14 परिवारों को नियमों और प्रावधानों के अनुरूप आवास निर्माण हेतु देय धनराशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। आगामी मॉनसून मौसम की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाढ़, भूस्खलन, सड़क अवरोध, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बाधित होने जैसी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए विभागवार तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में संवेदनशील और जोखिमपूर्ण स्थलों की पहचान कर समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों और जल निकासी तंत्र की सफाई, नदियों और खड्डों के जलस्तर की निगरानी, बाढ़ और पूर्व चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता, राहत सामग्री के भंडारण और आपदा नियंत्रण कक्षों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला आयुर्वेद अस्पताल कुल्लू की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत वित्त वर्ष तथा वर्तमान वित्त वर्ष के आय व्यय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अस्पताल की विभिन्न सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से 17,65,560 रुपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। बैठक में विभिन्न सुविधाओं और आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि आवंटित करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई और विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए कार्यों के व्यय को कार्यत्वर स्वीकृति दी गई। उन्होंने आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को आयुर्वेद, पंचकर्म और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बीते दिनों पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन की जांच और काम माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अनुपालना में जिला पर्यावरण योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। गत दिनों स्थानीय नगर निकायों और जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए। कुल्लू जिला परिषद के कुल 14 वार्डों में से 9 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते और 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। वहीं मनाली नगर परिषद की सभी 7 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। कुल्लू नगर परिषद के कुल 11 वार्डों में से 3 पर भाजपा समर्थित, 3 पर कांग्रेस समर्थित, जबकि 5 अन्य वार्डों में आजाद उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इसके साथ ही जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने परिवार को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे तो कितनी खुशी
1: होती कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो चीज़ें हैं ये
0: पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके,
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। हाँ। वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं आता वो किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है। और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल। और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र खोल दिया और आपने एकदम
0: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
0: अपनी
1: मत
0: सफाई देना।
1: हाँ, उसको वही सफाई ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर संयत होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, कि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपके लिए खड़ी,
0: वो सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं, तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया, है ना।
1: थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने अपने आप से निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना,
1: जी,
0: कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
1: बहुत जरूरी है,
0: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब कैसे होते हैं,
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए,
1: और इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है, लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
0: समझ
1: चाहिए,
0: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है।
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
0: क्योंकि चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
0: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है, इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
0: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर
1: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती
0: हूँ। तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
0: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
1: जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह, बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग की एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है। और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने

0: तो दूर के ढोल सुहावने कई बार ऐसा होता ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना वो ऐसी देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने
0: बिल्कुल और फिर वापस करो ये करो गुस्सा
1: सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गाँव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोल ही सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे जितना करीब जाओगे उतना ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं कितने कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं चेहरे से चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी लेकिन वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो दोस्ती परिवार एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं उसकी कुरूपता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: तो हमारे एक श्रोता इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया
1: रलियामणा।
0: जी यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें पास आने पर वही आवाज कान फोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे सही है। जी तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो लगती जैसे हमारी श्रोता जो लिखती है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाइयां कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
0: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है। आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है। परंतु स्वयं मैंने धर्मपत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियाँ और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता, तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता, तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक आप श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है, जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सायं के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज़ बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।
2: जरूर।

0: मेहता जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना है, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने कहते जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले आप, मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखें, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मैं मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होकर टी वी लगाऊँ, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना

0: उतना एंजॉय नहीं कर दिया अपनी फिल्में देख।
1: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
0: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है। मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है। मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
1: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, अच्छा। टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और हाँ। साहब बीबी गुलाम का भी आया है। हाँ। साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
1: हेमंत कुमार साहब की।
0: हाँ हेमंत कुमार साहब की आवाज़, वो बहुत अच्छा था।

0: मेरा जी दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: हाँ, बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी। तो बड़ी बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया। वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने। वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: चखा,
0: खूब चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम। शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे ख़ास से बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसके बारे में ज़रूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे। अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज़ टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीज़ें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे,
1: जी
0: और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोक झोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजू ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं आप। तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
1: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया है, कौन सी फिल्म थी वो?
0: अभिजान।
1: अभिषेक। बंगला आपको तो
0: नहीं,
1: आती
0: उसमें इतनी ज़्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब
0: हाँ,
1: की?
0: पाथेर पंचोली देखी थी,
1: अच्छा
0: उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी
1: जी।
0: मैंने। तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने
0: वो
1: क्या कहा के बारे में, उनको
0: उन्होंने
1: कैसा लगा आपका काम?
0: हाँ उनको उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्र चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की ज़रूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सब ने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइस होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि क्योंकि आई कॉन्ट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए ज़रूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफ़ा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किल से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए दो दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
0: हाँ वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम।
1: जी जी।
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना।

0: एंड सोते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ, अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों, मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही था जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ हो उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, को गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मज़ा आएगा, ये क्या बात है। ये नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फ़ायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगे और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाज़ा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाज़ें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था। और एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वाज़ वेरी कॉमिकल, इट वाज़ मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं, राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है
1: हाँ,
0: उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई कभी?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं, तो 20 साल बाद, नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग ख़त्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में

0: मंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा तो सुना, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज़ हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंत दा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज़ नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। और रियली मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मज़े की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हटकर के भी आप काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब

0: बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपने सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें, कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent covering the Prime Minister's G7 visit has filed this report.
4: This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. India's regular participation in the summit underscores its growing role in addressing key global challenges and contributing to international efforts to peace, security, sustainable development and economic growth. Ankit Kumar for Akashvani News, Avignon, France.
3: On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by President Macron. A key engagement during the visit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across sectors. The Supreme Court today sought response from the center and states on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile, and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohana issued notices to the centre and all states and union territories. The petition contended that the existing verification mechanism under Form 6 is inadequate and might allow individuals without proper supporting documents to be included in the electoral database. Ahead of the re-examination of National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026, which is scheduled for 21st June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency or NTA has welcomed the decision. In a statement, the NTA said that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. The Enforcement Directorate or ED is conducting search operations at 17 locations across Mumbai, Khandala and New Delhi in connection with the alleged fraudulent assignment of Yes Bank loans during financial years 2016-17 and 2017-18. The searches cover premises linked to Suraksha Asset Reconstruction Company Limited, Suraksha Realty Limited, Khyati Realtors Private Limited, their promoters, directors and employees, as well as a former Yes Bank employee. Extending their rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. Sensex jumped 544 points to close at 76,808, while Nifty rose 135 points to settle at 23,989. And in the FIFA World Cup, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States at 12:30 a.m. according to Indian Standard Time. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. The match will kick off at 3:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन फिल्मों से। श्रोताओं, इस भक्तिमय संध्या की शुरुआत कर रहे हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म की इस भक्तिमय रचना के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने।

भजन केवल भक्ति संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। चलिए इसी कड़ी में सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्तिमय रचना, जिसे हमने लिया है फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता और जसपाल सिंह की। युगल स्वरों में ये रचना है।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: ओम जटात विकल जलम प्रवाह पावितस्कले कले पलम।

सोनू निगम सुखविंदर सिंह के युगल स्वरों में लीजिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म से ये शिव भजन।

शिव वंदना की इसी भक्तिमय रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। युवा मंच कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट एंड दोस्त सीमा के संग। जी दोस्तों, मंगलवार की ये सुहानी सी शाम, जहां दूर पहाड़ों पर छाए बादल, पक्षियों का मधुर कलरव हमें सुनाई दे रहा है। ढलते सूरज के साथ मानो ये प्रकृति की सुंदरता कुछ अलग ही एहसास हमें करवा रही है। आकाश लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों से इस समय भर जाता है। पशु पक्षी अपने आशियाने की तरफ लौटने लगते हैं। ठंडी हवा मानो एक मीठा सा गीत गुनगुना रही हो। पेड़ पौधे अपनी मधुर धुन में झूमे जा रहे हो। जी हाँ, जब इस तरह का संगीत कहीं सुनने आपको को मिल जाए तो समझो आपकी शाम बहुत सुहानी है। और आपकी शाम को और सुहाना और मनोरंजक बनाने के लिए, जी हाँ, हम लेकर आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच लेकर। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है खास। श्रोताओ, सुहाने नजारों की तो हमने बात कर ली, और अब क्यों ना रुख किया जाए, जी हाँ, हसीन वादियों की तरफ सैर की जाए, किसी खूबसूरत से शहर की। तो आज सैर सपाटा के अंतर्गत बात हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी की। जी हाँ, डलहौजी जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, शांत वातावरण के लिए, देवदार के घने जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता को संजोए ये पर्यटन स्थल बहुत ही मशहूर है, और पहाड़ी जीवन और पहाड़ी संस्कृति का बहुत ही सुंदर संगम यहाँ देखने को मिलता है। तो आप भी ज़रूर सैर कीजिए डलहौजी की, और हम भी करवाएंगे आपको सैर इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन उससे पहले ये म्यूजिकल ट्रैक आप सभी सुनने वालों के लिए

जी श्रोताओं, आपको बता दें लुटेरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस फिल्म की शूटिंग भी डलहौजी के ही खूबसूरत नज़ारों में हुई थी। जी हाँ, डलहौजी की स्थापना की अगर बात करें तो सन 1854 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसका नाम उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। इसी कारण यहाँ आपको बहुत सारी ब्रिटिश शैली की इमारतें और चर्च देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इनके खूबसूरत नज़ारों की, तो डलहौजी के देवदार के पेड़ बहुत ही मशहूर हैं। चीड़ और चील के पेड़ इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। यहाँ की शांत वादियाँ और झरने, ठंडी हवाएं पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। सुबह की धुंध और शाम का सूर्यास्त यहाँ के खास आकर्षण हैं। डलहौजी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये हिमाचल की प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। यहाँ की पुरानी इमारतें, चर्च और स्थानीय परंपराएं हमारे इतिहास की झलक दिखाती हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा मंच आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज सैर सपाटा के अंतर्गत बात हो रही है

ऊंची चोटी है जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा आपको मिलेगा। ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, जी हाँ, खजियार की ओर जाते समय रास्ते में ये शानदार व्यू पॉइंट आता है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि दूर दूर तक हरियाली और घने जंगलों का नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिलेगा। बात करें पंचपुला और सत्यधारा फॉल्स की, तो प्रकृति के बीचों बीच ये झरने डलहौजी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। सत्यधारा के बारे में माना जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण है और इसकी गिरने की आवाज़ से चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर एहसास हमें करवाता है। तो बातें और, लेकिन पहले एक और प्यारा सा गीत।

उस भागम भाग भरी जिंदगी से निकालें कुछ पल, पहाड़ों की ओर रुख करें, उस सुंदरता की ओर जहां महसूस करेंगे आप उस सुकून को। अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ जी लीजिए उन पलों को जी भर के। और बात करें यहाँ के और खूबसूरत नज़ारों की, तो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देवदार और ओक के घने जंगल आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ के पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों का भी कुछ अलग ही सुंदर नज़ारा है। और खान पान की बात करें तो बहुत ही सादा खान पान है वहाँ पे। और बात करें यहाँ जाने की, तो आप एक दिन में आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं और रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से वहाँ हो जाती है। तो बस जब भी आपका मन करे, बना लें एक ट्रिप प्यारा सा और घूमें डलहौजी के पर्यटक स्थलों की ओर, और साथ ही साथ आनंद लें उन खूबसूरत नज़ारों का। और अब लीजिए आनंद इस प्यारे से गीत का।

युवा दोस्तों, तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते यही कहना चाहेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से। 6:05 पर कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां, जिसमें आज आप सुनेंगे नाटक नोखे लोग नोखियां गल्लां। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। पर आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम आतंकवाद रिले किया जाएगा। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला केंद्र से। 8:00 विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रस्तुत किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे देशगान। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार के अंतर्गत गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। 10:30 पर चित्रपट संगीत सुनवाया जाएगा। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सुनेंगे सुविचार के साथ इतिहास में आज का दिन। जी हां, 17 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी, जिसमें ग्लैमर गलियारा होगा बातचीत का विषय और फैशन की दुनिया से होंगी सखियां रूबरू। तो ये तो थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:58 हुए हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। वे आज फतेहपुर क्षेत्र के तहत कुठंडल में स्थित गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक समागम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और मानव कल्याण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का

0: आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने नवनिर्मित श्री दरबार साहिब भवन का विधिवत उद्घाटन भी किया। केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना सहित कई बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को जन समस्याओं का समाधान तीव्रता से करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरडीजी बंद होने से सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में निरंतर जन कल्याण की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण शिमला जिला में वर्ष 2023 और 2025 में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और सरकार ने प्रभावितों तक हर संभव सहायता मुहैया करवाई है। आकाशवाणी शिमला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1955 में आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। आकाशवाणी शिमला के उपनिदेशक अभियांत्रिकी कश्मीर सिंह ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 71 वर्षों में आकाशवाणी शिमला ने विश्वसनीय व मनोरंजन से भरपूर जानकारी लोगों तक पहुँचाई है।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को और सुधार सकें।
0: केंद्र के अतिरिक्त कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा कि आकाशवाणी शिमला अपनी स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और विभिन्न बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने श्रोताओं से कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव देने को भी कहा।
2: इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़ें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव है कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।
0: समाचार एकांश के प्रमुख व सहायक निदेशक रितेश कपूर ने कहा कि आकाशवाणी शिमला ने दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने श्रोताओं का आभार जताते हुए भविष्य में भी जनसेवा की भावना से कार्य करने का भरोसा दिया।
3: प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इसी समर्पण, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगे।
0: राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के भेड़ पालकों व घुमंतू पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े भेड़ पालन परमिट को सरकार ने मंजूरी दी है। मनोज ठाकुर ने कहा कि परमिट की सुविधा मिलने से इस व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ये परमिट हर वर्ष रिन्यू होते थे, जबकि अब इन्हें 5 वर्ष तक जारी करने की व्यवस्था की गई है।
4: सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आज दिन तक परमिट नहीं मिले थे और जो भेड़ बकरियां चराना चाहते थे उसके बावजूद भी वो चरा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए इसमें परमिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए इनके पशुपालकों का पंजीकरण होगा और उन्हें शीघ्र परमिट जो है वो जारी किए जाएंगे।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
5: FM एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारिया श्रोतियों जो किसान मित्र दी टियाले ते दो हथ जोड़ी के राम राम। कने किसान साथियों अज मेरे सोगी हैं टियाले पर देर उताई ताई जी राम राम।
2: राम राम किसान मित्र जी। कने कार्यक्रम किसान वाणी सुना करदे सारे ही किसान कने बागवान साथियों जो मेरी तरफ ते भी राम राम। कने असा उम्मीद करते हैं कि साढ़े जितने भी किसान भाई हैं भैन है ना कने जितने भी साढ़े रेडियो सुना करते हैं सारे अपने घरे कुशल मंगल होने हैं ना जी।
1: बिल्कुल हाँ जी। कने अजकल दिखा अहां दा जिहड़ा किसान है सह अपनी जिहड़ी सह जिहड़ी हुण खरीफ दी जिहड़ियां फसलां ने उन्हां जो लगाने जिहड़ा सह काफ़ी इन्हां जो जिहड़ा सह जिहड़ी सह व्यस्त है ना
2: जी।
1: कने दिन रात दिखा अहां दे किसान खेतां विच अपना पसीना बहांदे हैं ता ही जिहड़ा दिखा पूरे अहां बोलदे ने पूरे भारत वर्ष ते अगर अहां किसानां दी गल करीए तां दिखा इतने अनाज की पूर्ति होंदी है ना
2: जी। बिल्कुल जिखा भाई ताई तो साढ़े किसान जो अन्नदाता भी गलाया जाता है ना जी।
1: हाँ।
2: कने किसान अन्नतान ने कने किसान नहीं अन्नतान भी नहीं है ना पटियां खिलियां पौनियां है ना जी।
1: हाँ बिल्कुल दिखा देर ताई जी अहाँ आए दिन जी अहाँ सुनते ना जितनी मर्जी जी अहाँ जिस अहाँ बोलते ना अहाँ जितने मर्जी नोट कमाए लैन मोटर गड्डियां पा लैन बड़े बड़े घर बंगले पा लैन लेकिन खाने जो जी सह रोटी चाहिए है ना।
2: बिल्कुल
1: कने सह रोटी कुदू ते मिलनी जलू अहाँ दे किसान कने अहाँ सारे मिल के अपने खेतों में जड़ा सह फसल लगांगे खेती करगे तो
2: जी। बिल्कुल कने दिखा भी इसी कड़ी बिच असा एक होर योजना के बारे च गल करनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे च है ना
1: हाँ
2: जी।
1: जी जी
2: कने भारत सरकार द्वारा ये जड़ी योजना है से 25 दिसंबर 2000 च शुरू की गई हो थी। कने इस योजना का जड़ा प्रमुख उद्देश्य था कि साढ़े देश विच जितने भी ग्रामीण क्षेत्र ग्रां ऐसी बस्तियां ने जड़ी कि मुख्य रोड मुख्य सड़क कने नी जुड़ियां ने पिछड़ियां ने मतलब
1: हाँ
2: सड़क
1: जी
2: सड़क
1: जी जी जी
2: सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे ग्रां जो 12 मासी सड़क ने जोड़ने हैं ताकि
1: हाँ
2: पक्कियां कने अच्छी सड़क ते ना जो मिलन कने तिस ताई दिखा भाई अगर इस योजना बिच सड़क बन दी है तो साढ़े जड़े किसान बागवान कने बाकी जड़े और साढ़े ग्राएं बिच रहने वाले लोग हैं तिना जो कई तरह के जड़े फायदे हैं सह इन योजना के कारण मिलते हैं जी।
1: जी
2: कने इस योजना बिच जलू सड़क का निर्माण होना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिच तो कुछ एक शर्त जी कि भाई अगर पहाड़ी कने दुर्गम क्षेत्र की गल कर इस बिच जी जनसंख्या है सह 250 तो उपर की आबादी जी सह होना चाहिए है ना जी। ये नहीं भी 2000 घर हैं तो तू इस योजना के अंतर्गत सड़क बनी आनी है एक ही ग्राएं च आबादी 250 तो उपर है सह जो ग्रां है सह इस योजना के अंतर्गत ये सड़क जोड़ा अपने ग्राएं च बनवाई सकते हैं ना
1: हाँ जी, जी।
2: कने अगर थोड़ा जोड़ा साढ़े मैदानी क्षेत्र है तो तू जी जनसंख्या है 500 तो उपर होना चाहिए आबादी जी 500 तो उपर होगी तो सही सड़क इस योजना के सड़क का निर्माण जोड़ा से अपने क्षेत्र में करवाई सकते हैं।
1: हाँ जी
2: कहने देखा भाई जलू सड़क बनी आती है तो देखा कितना फायदा होता है देखा साढ़े किसान एक तो अपनी फसल
1: बिल्कुल
2: जो मतलब जिया उत्पादन निकलता है तो अस अपनी फसल जो गड़िए मोटर च पाई करी बड़िए सब मंडिये च भजवाई सकते हैं कने सोगी या तो मंडी कने सोगी अलग अलग जगह जाई के बेची सकते हैं जिया तिना की इच्छा है ना जी।
1: हाँ
2: कने सोगी की ये होंगे कि हूँ कई बार जी मशीनरी लियानी है खेतों बाहने वास्ते तो अगर सड़क नहीं होगी तो सभी बड़ी मुश्किल फसी आती है ना जी। सड़क होगी तो तरह तरह की मशीनरी आधुनिक औजार आने के अपने खेतर च अहाँ इस्तेमाल करी सकते हैं ना जी। कने दूजे कि साढ़े जेडे ग्रां होंगे तिना की जी पकड़ है सह साढ़े जेडिया स्वास्थ्य सुविधा न तिना पर भी बनती क्योंकि मान लीजिए कि कोई राती राती बीमार हो जाता है तो देखा भी सड़क नहीं है तो अजकल चुकी के कुनी
1: हाँ,
2: लेना है एम्बुलेंस नहीं पूजनी तो चुकी के भी पीठी कुनी लेने है ना जी।
1: बिल्कुल दिखा भी जेडे अहाँ गल करिए ना पिछले जमाने की दिखा पालकियों बिच भी जेडे सह चुकी की कितनी दूर दूर पहुँचाते हैं मरीजें जो है ना
2: जी।
1: लेकिन हूँ दिखा सह सारे साधन नहीं रही होगा ना तेना जो जेडे उठाने का अनुभव हा सह भी जी जी नौ युवा पीढ़ी उन्हें जो नहीं है ना
2: जी
1: तो कुल
2: बिल्कुल
1: मिलाए कि यह बोल सकते कि रस्ते जड़े से बांग के जिस अहम बोलते हैं परिवहन व्यवस्था जड़ी कि सड़क की जड़ी से बड़ी एक जरूरत है जी तो दसिया कि जी किसान ताइया स्वास्थ्य होई या शिक्षा होई ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਲ ਭੂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਸੜਕ ਅਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ
2: ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਿਸਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਸਾ ਕਾਰਿਆਨਵਨ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਇਸ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਤਰ ਪਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਗਰ ਸਾਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਂ ਸੁਣਨੀ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਸੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੇਂਟ ਵਾਰਤਾ ਨੇ
2: ਜੀ।

0: जंगली जानवर ना,
1: हाँ
0: उन्हों का देखो परमात्मा वालों बनी परहेज है कि
1: जी
0: थोड़े घट आमदे मेरे लिए,
1: हाँ जी।
0: बाकी तारबंदी कीती है अपनी।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बाकी नहीं कोई स्कीम का लाभ नहीं लिया कोई है ना।
0: इस चीज च बाड़बंदी जीन लिया जनाब जी,
1: अच्छा
0: आज जीन
1: अच्छा
0: लिया, बाकी प्रकृति खेती च मिकी सत अठ लाभ मिली इस चीज, अनुदान मिली है
1: हाँ
0: हर एक जो जितने जितनी आप पता क्या जितनी किसान मेहनत करगा सरकार भी
1: हाँ
0: उस हिसाब ने प्रोवाइड
1: हाँ
0: कर
1: अगर
0: दी बंदे
1: देखा
0: की।
1: कुछ भी लाभ अगर कुछ भी मिलना था तो
0: हाँ
1: कुछ ना कुछ तो करना पौना।
0: करना पौना दिखाना
1: खाली
0: पौना।
1: अगर हाँ अपने इस फायदे ताई अगर लाभ ही लै ना
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी हाँ जी
1: तैयार
0: हाँ
1: भी
0: जी
1: जरा सा नहीं
0: हाँ
1: चलना
0: जी नहीं
1: काम है ना
0: चलना, कई बोलते
1: क्योंकि
0: कि हाँ जो ये नहीं मिल रहा ये नहीं, देखो पहले कुछ करना पौना सरकार जो
1: हाँ
0: दिखाना पौना कि हाँ एक किसान के लायक ना कन काम करके ओके दसाने हैं।
1: करना। देखा अजकल ता किसान जेड़े की प्राकृतिक खेती वाले किसान है जी तो हाँ जिक्र किया
0: हाँ जी हाँ
1: कि
0: जी हाँ
1: कण
0: जी
1: के रेट ज्यादा ही हल्दी है
0: हाँ जी
1: उन्होंने एक पंजीकरण हुआ था कि देना जो प्रमाणित किते ज्यादा कि ये वाला किसान है विभाग के कर्मचारियों द्वारा कि इस ये जेड़ा था प्राकृतिक खेती करता।
0: हाँ जी हाँ जी
1: इं तो कोई भी अपना उत्पाद ले आते नहीं बोना तो देसी है बिल्कुल नए
0: नहीं
1: रेट दिया ना
0: देखो इस चीज ये
1: हाँ
0: जुड़े नहीं हुई है 8 साल, क्योंकि 2018 ते प्रकृति खेती का एक अभियान चल रहा है इस चीज
1: हाँ जी
0: है ना,
1: हाँ
0: इस चीज जो बंदा उस टाइम दे चले आया
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: तो समझो आज तक कामयाब है
1: हाँ जी
0: प्रकृति खेती का मोड़ एक नवा लियाने
1: जी
0: वास्ते।
1: जी बिल्कुल तो हाँ ठीक गलाया। कहना देखा भाई कोशिश अहां दी भी ए होना चाहिए कि हाँ जो भी होला होला हुण प्राकृतिक खेती वाले पासे जड़ा से मुड़ना पौना जी तो दस्या कि मती
0: हाँ जी
1: सारियां
0: हाँ जी
1: जी बीमारियां ते बचने दा अगर कोई इलाज है तो सह या प्राकृतिक खेती है ना।
0: देखो एक दिन ये मोड़ लेना पौना हिमाचल, हर किसान जो इस मोड़ पर आना पौना प्रकृति खेती दे काबिल बनना पौना।
1: जी सुखजिंदर जी अहां दी जेड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हें जो तुहां क्या सुनेहा देना चाहेंगे कि सही कि अपनी खेतीबाड़ी करी के जड़ा सा अपना रोजगार चलाई पान।
0: तो हाँ मेहनत कर रहा है ना,
1: हाँ जी
0: अपनी जे जमीन जायदाद है अपने को, बाहर घूमने कोई लोड़ नहीं,
1: हाँ जी
0: तो अपनी जे अपने सिंचाई के भी साधन है तो अपनी खेतीबाड़ी करो, सबसे बढ़िया तरीका यही है,
1: हाँ जी
0: सबसे बड़ा रोजगार अपनी।
1: हाँ देखा भी अपना काम है ना
0: हाँ जी
1: कोई कुछ से रोब नहीं है।
0: मतलब भी कोई नहीं जनाब।
1: हाँ कहना देखा मते अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जेड़े से अहां दे किसान जेड़े से अपनी
0: हाँ जी
1: पहचान जेड़े से बनाई ली है।
0: हाँ जी
1: जी सुखजिंदर जी तो हाँ अपना कीमती समय निकालेगी अहां दे टियाले पर आए अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव तो हाँ अहां कन्ने साझा किते तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद। जी ता अहां सुनी जेड़ी सा ए उन्नत किसान हो रहा कन्ने कीती गई गलबात कन्ने अहां जो भी जड़ा सा प्रेरणा मिलती है कि जल वहां इक्की दुए किसान साथियों के अनुभव अहां सुनते हैं ना ते अहां जो कुछ ना कुछ सीखने हो कन्ने दिखने हो जड़ा सा जरूर मिलता है।
2: जी कने हुण फिरी अहां एक बारी चलना है लोक झनकार दी तरफ कने सुनना एक और प्यारा दिया लोक गीत।
1: जी।

0: किसान कने बागवान साथी हो इसी लोकगीत कने साढ़े कार्यक्रम दसवें इत्थों मुकरदा जाने ते पहले दसी दी ये कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहे विपिन कुमार दे कने कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह और दी कने हुण असां दूनी जदे अनुमति
1: अच्छा जी जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:35 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजां गराएं दियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया सुनने वाले सारे ही श्रोते हैं जो कने किसान कने बागवान साथी हैं जो मेरी तरफ ते राम राम कने आज ट्याले पर मिंजे सोगी हैं किसान मित्र हो रहा था किसान मित्र जी तुसा जो भी राम राम
1: राम राम सारे दा एक बारी फिर यहाँ ट्याले पर स्वागत कर देने ना।
0: हां जी
1: कने कार्यक्रम लेकर ही हाजिर है ना हुन अहां मौजा ग्राएं दिया
0: जी कने आज इस कार्यक्रम च असा सुननी है पहाड़ी हास्य नाटिका नोखे लोक नोखियां गल्लां कने इस नाटिका दा जेड़ा विषय ऐसा है फास्ट फूड दे नुकसान क्या क्या ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: पर इस हास्य नाटिका जो सुनने दे पहले असा सुनना एक संदेश कने तिसे बाद सुननी है हास्य नाटिका
1: जी।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.

0: हाय वो मेरी ये जानी घड़ी च टाइम तो बड़ा हुई आ 9 बजे दे बाद अज छुट्टी आनी है जड़ी ए घरे दा काम कमोड़ा ही नहीं मुकदा कितनी भी तौल करा मैं कदी भी टाइमे दी नहीं पुजदी है केसरो आए रहना ना तिन्ना भी ताने देने न मंजो उंगा कुथू मेरा समान फटाफट कपड़े लांदी है ए भी प्रेस करने हो वो भी प्रेस करने हो ए जड़ा टंगोया इसी लगांदी झटपट जांदी मैं तैयार लेट हो जाना नहीं तो सिरे पार दिए ना आए रहना तिन्ना भी फिरी लेट हो जाना मैं पिछे हटड़े फिंडुआ तैयार होना दे मिंजो बड़ी बारी खरीद करना पौनी कने पत्नी कितना टाइम लगना है आज बाजार छड़ मेरे चादर वे खिंजी खिंजी ते फाड़ी हड़ना है आज छुट्टी करी बैठिया स्कूले भी नहीं गया ना स्कूले भेजना तल तुझे पेटे पीड़े का बहाना होंगे पिछे ते तू खरा हो जाता क्या होया तुझो क्या हो दा हुन फिंडू ऐ कहे ते अल्ला पाया मंदा नहीं है तू ना मत दिन दिन तो हमें जो बाप पुत्र जीना कुथी मैं चली पौंदी ते इसी उते इसते बब्बे ते भी ज्यादा काली पौंदी मैं नवा सूट लाने की इना यो लगी पौंदी पेटे पीड़ा दिखने कुत की करे ते बाहर निकलना दिन दे मिंजो जीना दिन दे मिंजो मेरी जिंदगी पिछाएट चुप रह कने लाइयो नक्की पूंजी क्या ऐसी हो सारा थोबड़ गंदा करी लिया इन्नी
1: शांतिये ओ शांतिये
0: इल्ले केसरो भी आई रही इन्ना पक्का ताने मारने उन मिंजो
1: ओ शांति ओ इत्यार मुश्किल ये वो मुश्किल ही है बस निकल यानी 9 बजे दी ओ फिंडू भेजबो अपनी मम्मी है यो
0: आई अंदर आई अड़ी जरा के
1: ए वो नखरी गान पानी है अंदर आई है इन्ना लिए बड़ा भारी टाइम लाना चली पोंदी अंदर ही होई हाओ शांति ये ए कहे इन्नी रोला पाए इतना पारी
0: मी दिख लग दे रींड पाई हो इन्नी कुथी जाना क्या ए कोप तो मेरे सिरे पहले ही है ना
1: ओ मुन्मा तू कहे और रोंदा रहंदा मऊ दी जानी खांदा म्या ऐ कहे कर रह रखिया शांति ये स्कूल ले कह नहीं भेजे
0: ओ आज इस दे पेटे पीड़ है मिये क्या दसा तिजो है निगी है स्कूल ले अट पचा अटड़े फिंड हुआ
1: उल्ट फुल्ट खाना मिये आज कल दे बच्चे आं तब पेटा पीड़ा इकड़ा ना हाँ बड़ी भारी जैम तो निकी आने ने भी रोटियां काट खान दे कने बस उल्ट फुल्ट लगियो
0: इन्नी नी मानना ओ दिख मी केसर इन्नी नी मानना
2: मम्मी मम्मी

0: जनी लेके जान दे। मम्मी जी बाजी कहानी है।
1: एले पकड़, एले बीर पिये। ए मुकोड़ुए दुकान ना जाया ना, करे खाए होए बाजी, छड़ मेरे पीछा।
0: मम्मी मम्मी जाना, शोगी मम्मी जाना।
1: और भी लेऊंगी तुझे मैं बाजी, चल चल केसरो, ओया चुप जरा ए, नसी चल दिया ना।
2: हाँ बो शांतिये, तेरी लाद बड़ी खराब। मेरिया कुड़िया बड़िया फारी सोबरिया, जरा नहीं रोंदिया। मैं तैयार होवे ता हां इन्ने कल उदा टिंगा वे केचू लाइयो मारिसियो दो कने ठोक अंदर कमरे च।
1: ये मत बोल लड़िए कितने भागा दा मेरे फेंडू, इया लगी तू गलाना। ए जरा बारे दे लोग आंदे ना, तेरा दिखी करदा ए ड्रामा। ओए मेरे फेंडू बड़े शरीफ है। ये मत बोल मेरे मुनुए, चल तू चल।
2: ता के पाए ते एड्डा ला शांतिये, मेरा क्या जानदा, बठैल मेरा जाना इसी अपने सरे पर। चल चल तू, बस छुट्टी आनी 9 बजे दी। चल जेड़े लायो ना, चल तू ही नहीं हुई।

0: जड़ी ये तनी टूटी यानी खंडाला बोरू ले आना था इतने के चोड़े का ले चलियो। हाय थकाई थी ओ इन्ना। हाँ बोमिए बड़ी भीड़ कने बाजारे च आजकल बाजारे होने तो बड़ा बरी औखा चूहे ले पे पेटे च दुड़कना खाई लैंदियां मी कुछ।
1: मैं तो तुझे बड़े टाइमे दी ही बोलने आई बड़ा भारी डो पे अडीक बजी आ दी पेटे मेरे मी खाली हो चल चल लंघ पा रहे उतू खांदे लेन दे चली अपना डब्बू लो का दिया पाएन में तीस चौथू बहनी है चल खानी है
0: उना ना मिये रोटी नहीं खानी रोज ही तो खांदे करे ओ चले मिये पहले तो ठंडी ठंडी कुल्फी खाई लेंदी है न चल चल सड़क लंघ।
1: हाँ मैं तो नहीं खांदी बाहर आई करी है कुछ भी मैं नहीं खांदी ना कुल्फियां कल्फियां जाना बड़ा है ना कियां बनाइया होनी हाँ इन्हों के हथा दे भाह नहीं दिखे होंगे मिंजो ते ना बो ना
0: हा अड़िए केसरो ओना भी क्या तीजो ने बोझिए तुम्हें हा छड नी खानी आइसक्रीम ता ओ चल दुकाना पार मिए अतरो चतरो दुकाना चल दिया इतू जाके खादिया न मोमो चौमिन समोसे बड़े स्वाद बनांदा मिए मैं तो जालू बाजार आंदी जरूर ही खादी समोसे दी प्लेट भी
1: चली जरूर पऊंगी तेरे सोगी पर मैं खाने नहीं न मैं अपने डबुए दे दो फुलके ही कढ़ने न चल कुछ नहीं है गवाया ता फिंडुए दा सियो दिया फिंडू अड़ियां पांदा सियो दी तू अड़ियां
0: पांदी मेरी फिंडुए दा नाम बिच का ही ले दी तू है सोगी ता आया नहीं है ना करे ये से बैठिया रोंदा छड़ी आई एक कने चढ़ी से आप पता नहीं क्या क्या कमा दा होना चल तू खाई लेंदी मोमो चोमे ने तीसिए भी ले आएंगे खुश रहंदा मिया है खाने हो सुकर है वही जगह खाली मैं गलाया है ना बड़ा फेमस है यात्रो चतरो मोमो चोमिनाला आया बैठ ला इस जगह बैठ दिया
1: ले ले ले बैठ तीड़ कुर्सी है सरवाए ले तीड़ हाँ बड़ी बड़ी भीड़ हो मैं शांति ऐसा दुकान ना दिख भला जड़ा सा कि पैया ओ मेरी ये जानी तू खा मैं बड़ा डब्बू खोलना
2: है लेंगे तू हां
1: इसे पूछ पाई किरी करिया इन्ना खाना के ही
2: तू हां दसी दे ता
0: ए भाई एक प्लेट तुहां चौमिन लेवा करी एक प्लेट मोमो दी लेवा चटनी खरी लेउने मती मिर्चा मतिया पाने भाई
1: खाइयांगी तू सब कैसी
0: प्यागत काली काली खाद्य नहीं है भूख नहीं लगी मिंजो खाई लेना मैं करी बचियांगा तो अपने फिंडुए पैक कराई लेना मैं मत कर तू चिंता तू खाई ना रोटियां
3: भाई चटनी तो दे आता इस पा है
0: ए कौन है अड़िए आवाज तो पछाणी लगा दी सुनी ते
3: पागला दी ता मैं ए तू मंगी चटनी मैं
1: किरी के दिखी ले मिए ये तो सही लगा दी मिंजो खोलनी आवाज लगा दी
0: कौन दे ए जड़ी पीले चादर वाली है ना ना खोलनी कदा होना सैनी खांदी दी चीजा अगे परहेज करदी से घट वादी होंदी से और ही होनी कोई ए
1: ओ शांति तू मन चाह ना मन ए सही है सही वो खोलनी ये खोलनी ठहरा तू मुझे जरके दिखाना दे छड कुर्सी है तू ओ मेरी ये जानी खोलनी तू ओ मेरी ये जानी ओ शांति आ वो आ ए दिख भले तो खोलनी मैं तिजो गलाया था ना खोलनी यही आवाज
3: आई नहीं दिखी खोलनी कभी पहली बारी दिखी हो अज
1: ओ मैं शांति ये दिख दिख
0: ही सो खोलनी तू तू भी आई है तू आत्रो जत्रो दुकान ना
3: गए हो मैं नहीं आई सकती
0: ये मैं सोचा तू तो दे चीजा खान दी नहीं
3: हाँ तू हाँ खाई सकती हाँ
0: मैं तो तू पहली बारी दिखी मैं ही ना इना कंडे आले चिमचिमो पकड़ दी ये दिख ही ना संगलोए की है सुरुड़ सुरुड़ करके खा दी
3: मैं नहीं खान दी मैं ये बड़ी परेजन ही पर दुआई खाई खाई मेरा अंदर पड़ासी है मैं भी जरक री दो सूट लाने हैं नड़ाना है मैं बोले मैं भी खाई आंदी
0: ये दिख मी पाने ला दी खांदी होनी है अगे पीछे भी आंदी होनी है
3: खांदी स्वाय दा बड़ बड़ी लुकी लुकी बैठी पर तुहां ते गुण बचदा पता नहीं कदां ते चले आईयां नीम मैं ता खादा नहीं खादा अब तुहां के कराई है तू
1: मैं ता मिये फुलकुआ खाना आई हो ये दिख भला मेरा टिफिन ए पिया
3: ता फुलकुआ खाने घर नहीं लगा टाइम दीजो
0: सही तो मैं ही सही बोला दी बाजार आए कुछ चटापटा खाना चाहिए ना है ना अरे मेरी तो दो प्लेटा हुई है खाली एक प्लेट में फिंडुए पैक करानी है इन्ना तो रोटियां ही खादियां इन्नी खांदी मां कंजूस मिंजो तो फुल नहीं पता होंदा ना तैं आना तो जड़िए से आपा फोन करके तीजो नहीं आंदी इसने आना कुनी
3: मिंजो ने कता आना मिंजो तो कोई भी लिया लिफ्ट लुफ्ट में तो दा

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की
2: अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
5: के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मनोज सिंह राणा। Prime Minister Narendra Modi is participating in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity at the G7 Summit in Evian, France. The session is being attended by leaders of the G7 nations, partner countries and key representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting just commenced after French President Emmanuel Macron formally welcomed the Prime Minister and leaders of other partner countries, followed by a group photograph of the participating leaders. Earlier today, the Prime Minister arrived in Evian on a two-day visit to participate in the summit, which got underway yesterday. On the sidelines of the summit, the Prime Minister has a packed diplomatic schedule. He is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. A major focus of the Prime Minister's engagement at the summit will be his meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to hold wide-ranging discussions on bilateral cooperation across sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. US allies at the Group of Seven Summit

0: Of major industrialized nations work today to push the war in Ukraine up the agenda of President Donald Trump after more than 4 years of the conflict. Host President Emmanuel Macron of France said he will seek to persuade Trump to continue supporting Ukraine and increase pressure on Russia to help reach a peace agreement. As the US under Trump has cut back aid to Ukraine, France and its European allies are now the biggest providers of military and financial support to Kiev. Ukrainian President Volodymyr Zelensky also joined G7 leaders for a morning working session, but talks wrapped quickly as leaders gathered for just 75 minutes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has launched Unified Payments Interface UPI at Nice Messina in France. In a social media post, Mr. Goyal said that by bringing India's world-class digital payments platform to one of France's premier retail destinations marks another significant step in UPI's global expansion. He added that the initiative showcases India's ability to deliver trusted, seamless and interoperable digital solutions at scale. The minister further noted that the launch is strengthening the economic and technological ties between India and France, reflecting the growing depth and ambition of strategic partnership between the two countries. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism, JCM, under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation in climate action, greenhouse gas emission reduction, and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on the 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the JCM. The mechanism provides a framework for collaboration on mitigation projects that reduce or remove greenhouse gas emissions while supporting sustainable development in India. West Bengal Chief Minister Shubhendu Odhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles, EFR, will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally at Kursiong in Darjeeling, Mr. Odhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. Mr. Odhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gorkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. In the FIFA World Cup, France will take on Senegal in a Group I clash at New Jersey in the United States at 12:30 a.m. according to Indian Standard Time. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group I encounter at the Boston Stadium. The match will kick off at 3:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम आतंकवाद।
2: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जनकल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
4: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
3: जी,
4: विश्वास और जनकल्याण
3: जी,
4: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए।
3: जी,
4: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
3: बिल्कुल।
4: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
3: जी,
4: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
3: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
4: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने।
3: जी,
4: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा।
3: जी।
4: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने।
3: जी।
4: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
3: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
4: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
3: जी।
4: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
3: जी।
4: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
3: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
4: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक, टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
3: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह की पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
4: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहाँ पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
3: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
4: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
3: जी।
4: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
3: जी।
4: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है। उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
3: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
4: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है, जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
3: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
4: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
3: जी।
4: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
5: जी।
4: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
5: जी।
4: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
4: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
5: जी,
4: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
5: जी?
4: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
5: जी।
4: आप एक बात बताइए
5: जी,
4: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
5: जी।
4: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
5: जी?
4: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
5: जी,
4: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
3: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
4: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
5: जी।
4: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
3: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
4: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
3: जी।
4: तो ये हरा भरा गृह छोड़ के जाए
3: जी।
4: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
3: क्योंकि आपने बच्चों की

0: बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: देश गान अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 होने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ प्रशस्त। हिमाचल को हर वर्ष मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश ने छुआ विकास की नई ऊंचाइयों को। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, 15 जुलाई तक होगा मकानों की गणना का कार्य। और लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर मांगों को लेकर अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। वे आज फतेहपुर क्षेत्र के तहत कुठंडल में स्थित गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक समागम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और मानव कल्याण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान कानूनी और सुशासन के क्षेत्र में हुए कार्यों और लीगल गवर्नेंस से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और विकास की गति लगातार तेज हुई है।
1: धर्मशाला में एक हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक्सेस टू जस्टिस, और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लीगल फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म किए, जैसे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी, उसके बारे में भी वर्कशॉप में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और उसमें जो एक विकास की रफ्तार थी, गुड गवर्नेंस की और देश बढ़ा, ये आगे भी शानदार तरीके से देश का विकास होता रहे, ऐसी हमने ज्वालाजी माता जी से प्रार्थना की।
0: प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान आज से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकान और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये डाटा देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद जरूरी होगा। निदेशालय ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के भेड़ पालकों व घुमंतू पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े भेड़ पालन परमिट को सरकार ने मंजूरी दी है। मनोज ठाकुर ने कहा कि परमिट की सुविधा मिलने से इस व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ये परमिट हर वर्ष रिन्यू होते थे, जबकि अब इन्हें 5 वर्ष तक जारी करने की व्यवस्था की गई है।
2: सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आज दिन तक परमिट नहीं मिले थे और जो भेड़ बकरियां चराना चाहते थे उसके बावजूद भी वो चरा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए इसमें परमिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए इनके पशुपालकों का पंजीकरण होगा और उन्हें शीघ्र परमिट जो है वो जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेशित किया है उसके मुताबिक हम 5 साल तक जो है ये परमिट जो है जारी करेंगे और 5 साल के बाद नए सिरे से दोबारा फिर इसकी माल शुमारी के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबसे बड़ी
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टौंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने संबंधी मामले को मजबूती से उठाया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल और लाभान्वित राज्यों के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी शिमला ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1955 में आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्ष के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। आकाशवाणी शिमला के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी कश्मीर सिंह ने कहा कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 71 वर्षों में आकाशवाणी शिमला ने विश्वसनीय व मनोरंजन से भरपूर जानकारी लोगों तक पहुंचाई है।
3: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे

0: अपना विश्वास बनाए रखा है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को और सुधार सकें।
1: केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा है कि आकाशवाणी शिमला अपनी स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और विभिन्न बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने श्रोताओं से कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव देने को भी कहा है।
2: इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़ें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव हैं कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।
1: समाचार एकांश के प्रमुख व सहायक निदेशक रितेश कपूर ने कहा है कि आकाशवाणी शिमला ने दूरदराज व जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने श्रोताओं का आभार जताते हुए भविष्य में भी जन सेवा की भावना से काम करने का भरोसा दिया।
3: प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इसी समर्पण, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगे।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज मंडी जिला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय सरनोहली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के सुंदर पर्वतों और प्राकृतिक संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजीव गांधी वन संपदा योजना के तहत वनों के संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले राजेश धर्माणी ने सेगली पंचायत में बनने वाले आईटीआई भवन का शिलान्यास भी किया और कहा कि इसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने आज सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। दृष्टिबाधित जन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक दृष्टिबाधितों की जायज मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
4: मेरा नाम राजेश ठाकुर। जैसे ही दिव्यांगजनों की समस्या आ रही है तो सरकारी विभागों में क्लास 4 का बहुत अधिक मात्रा में हमारा बैकलॉग बचता है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए और पेंशन भी हमारी 5100 रुपए महीने की सोच दिव्यांगजनों की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों को लाया जाए और हमें जो सारा पेंशन मिलती थी वो भी 12 महीने से बंद पड़ी है उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और यूडीआई कार्ड वो भी लागू जाए।
1: शिमला पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के खरड़ से मुख्य सप्लायर हरप्रीत उर्फ हैरी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 309 ग्राम हीरोइन और 61,900 रुपए नकद बरामद हुए हैं। एएसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि इस साल शिमला पुलिस ने अब तक 2.5 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी है, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना सहित कई बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद व भारतीय ग्रैपलिंग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक ला रहे हैं, जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। सुंदरनगर में उनके सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सहित देश के हर कोने से आने वाले ग्रैपलिंग खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ प्रशस्त। हिमाचल को हर वर्ष मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से की नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा बीते 12 वर्षों में देश ने छुआ विकास की नई ऊंचाइयों को। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू। प्रगणक 15 जुलाई तक घर घर जाकर करेंगे जनगणना का कार्य। और लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। सरकार पर मांगों को लेकर अनदेखी का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
6: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
7: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

जी श्रोताओं, संगीत वो मधुर भाषा है जो हर दिल को छू जाती है, कभी आंखों में नमी तो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो चलिए आज के सुर में सफर में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बी प्राक का गाया ये खूबसूरत संगीत।

एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

विविध रंगों से सजे मधुर गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। और ये रही कार्यक्रम की अगली पेशकश।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस आकाशवाणी धर्मशाला के संग। रात्रि के 8:26 और 33 सेकेंड और ये रहा कार्यक्रम का अगला नगमा।

सतेंद्र तरताज का गया ये गीत और इस गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

कार्यक्रम की पहली पेशकश पूर्व और पश्चिम फिल्म से। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने और इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं इंदिवर के।

0: फारसी गीत के साथ देशगान ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं

बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है।

0: आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के

0: सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries, and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability, and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
4: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the Global South. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation, and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
3: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer, and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advance contingency plans for low-rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
5: The agriculture minister gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
3: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshau multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation

जी श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायकों में से एक थे एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें प्यार से एसपीबी और बाला कहा जाता था। उनकी मधुर आवाज ने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को प्रभावित किया।

मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और आज आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ लोकप्रिय गीत। श्रोताओं, आपको बता दें, उनका पूरा नाम श्रीपति पंडिता राधुल्या बाला सुब्रमण्यम था। उनका जन्म 4 जून 1946 को नेल्लौर में आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म के पार्श्व गायन

से की। उनके नाम 40,000 से भी अधिक गीतों के गायन का उल्लेख मिलता है और वे अपनी बहुमुखी आवाज के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। उनकी आवाज में मिठास, भावनाओं की गहराई और अलग अलग शैलियों में गाने की क्षमता थी। तो आइए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

जी श्रोताओ, एस पी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में गायक एस पी बाला सुब्रमण्यम की। वे अपनी सरलता और विनम्र स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी और उनकी आवाज कई कलाकारों की पहचान बन गई। उन्हें 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री 2001 में प्रदान किया गया, पद्म विभूषण 2011 में दिया गया और पद्म विभूषण 2021 में मरणोपरांत प्रदान किया गया। इन्हें भारतीय संगीत का एक अनमोल रत्न माना जाता है। उनकी आवाज में रोमांस, भक्ति, शास्त्रीय और भावनात्मकता गीतों में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती थी।

हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के इसी गीत के साथ थे। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना शक्तिचंद और साथियों का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति वर्षा कटोच की आवाज में

वर्षा कटोच का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, लोकगीत जिसमें बसी है गांव की माटी और अपनों का दुलार। जी हाँ, लोक संगीत ही तो है जिसमें बसता है हमारी संस्कृति का श्रृंगार। तो सुनते हैं एक और लोकगीत जिसे गाया है अंकुश संदल ने। और साथ दिया है विक्रांत।

उमेश ठाकुर और साथियों का गाया ये लोकगीत आपने सुना, धाम गीतां दी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, हमारे लोकगीत हमारी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। मिट्टी की सौंधी सी खुशबू ये कहीं बिखेरते हैं तो कहीं हमारे भक्तिमय भाव को दर्शाते हैं। और इसी कड़ी में लीजिए सुनते हैं एक और लोकगीत।

जी श्रोताओ, नरोत्तम और साथियों का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। जी हाँ, लोकगीत जो पहाड़ों की ठंडी हवाओं का जिक्र करते हैं, झरनों का ठंडा पानी हो या खेत खलिहानों की सौंधी खुशबू, इन्हीं लोकगीतों में हमें उनकी खूबसूरती की झलक दिखती है कुछ इस तरह से।

निर्मला कश्यप के गाए इसी लोकगीत के साथ हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म दूसरा आदमी से। राजेश रोशन का संगीत है और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म कभी कभी से। खयाम ने इस गीत की धुन बनाई थी और बोल थे साहिर लुधियानवी के। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में मैं हूं आपकी हम सफर सीमा। ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जुर्म से।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वरों में। राजेश रोशन का संगीत निर्देशन था और बोल थे इंदिवर के। और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से।

कटी पतंग इस फिल्म के इसी गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people, and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishav multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishav project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kurseong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valor and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: Hi.
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्रातःकाल 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।